0: हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कालम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 आई 0242-460100
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل

पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿिए ॾींहं बि हल्की ऐं तेज़ बरसाति जो सिलसिलो जारी। डायली तालके जे ॻोठ जीतराड़ ऐं खेतारीअ में बरसाति सबबि 30 खां वधीक कचा घर ड्रही पट। कंबर बाड्रा ॾोकिरीअ में वसकारो। बरसाति जो सिलसिलो सूमर ताईं जारी रहण जी अॻकथी मौसमियात खाते मूजिबि कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन, सांगर, टंडो, मोहम्मद खान, मटियारी ऐं शहीद बेनज़ीराबाद में 27 जुलाई ताईं हल्की त किथे तेज़ बरसाति पवंदी। इम्कानी बरसाति खे नज़र में रखंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह CM हाउस में रेबिन एमरजेंसी डेस्क क़ाइमु करे छॾी। लाॻापियल इदारनि खे मुतहरिक रहण जी हिदायत।
1: पंजाब में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी। लाहौर, सरगोदा, हाफिज़ाबाद, वाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में तूफ़ानी बरसाति सबबि गोॾे जेॾो पाणी भिजी वियो। गुजरात जे इलाइक़े कड़ियाल नवाल में बरसाति दौरान घर जी भिति किरण सबबि 3 भेण भाउ फोत। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूद पाणी निकाल न थियो।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ईरान ते लॻातार 2 हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बाद गुज़िरियल राति सदर ट्रंप जे इहे हमलनि जी मंज़ूरी ॾिनी। ख़बर एजेंसीअ मूजिबि इहो वाज़ह न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या जंग बंदी थी वई आहे, पर 2 हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वटसि हमला जारी रहण ऐं उन्हनि खे वधीक सख़्त करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी आहे, पर अकुलमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।
1: ईरान पारां अमरीकी फ़ौज जे जारियत ख़िलाफ़ अमरीकी अॾनि ते जवाबी कार्रवाई में 11 रीफ्यूलिंग विड़ाक जहाज़ ऐं ड्रोन तबाह करण जी दवा। आसरा इनकलाब पंहिंजे बयान में चयो आहे त अमरीकी अॾनि ते हमले में हैंगर में बीठल हिकु F-15 जहाज, हिकु P-8 जहाज, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज, 8 ॿियनि रीफ्यूलिंग जहाज़नि समेत 17 ड्रोन तबाह करे छॾिया आहिनि।
0: ईरानी फ़ौज जे ख़ातिबुलंबिया मर्कज़ी हेडक्वार्टर जे सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर चयो आहे त उहे अमरीकी फ़ौज सां इम्कानी ज़मीनी जंग में मुक़ाबले जा मुंतज़र आहिनि। दुआ आहे त अमरीकी फ़ौज जंग जे मैदान में संदन साम्हूं अचे त जीअं सिधी रीति मुक़ाबिलो करे सघिजे। ब्रिगेडियर वधीक चयो आहे त दुश्मन सां हिकु ड्रिघी ऐं लाॻीतो जंग आहे जेका ख़तम थियण वारी न आहे। अमरीका ज़मीनी हमिलो कयो त ईरानी फ़ौज हुन जो मुक़ाबिलो करण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।
1: चीन पारां ख़िते में जारी सूरतहाल ते ॻणिती जो इज़हार। अमरीका ईरान खां मसइले जे हल लाइ जल्द ॻाल्हियूं शुरू करण जो मुतालबो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास रैकचीअ जे चीनी हम मनसब वांगजीअ सां किर्गिस्तान में मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर पारां ईरान जे ख़ुदमुख़्तियारी जी हिमायत। वांगजीअ चयो त इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त ख़ते में अमन ऐं इस्तेहकाम तरफ़ वञण जो वाहिद रस्तो आहे। बीजिंग पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे सालसी वारनि कोशिशुनि जी हिमायत जारी रखंदो। अब्बास रैकची चयो त अमरीका जंगबंदी मुआहिदे जी पंजकड़ी कंदे ईरान ते हमला कया। ईरान जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिशुनि बरक़रार आहे, छिकताण में वाद नथा चाहियूं।

0: भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियण बाद वजीर आजम धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा मंजूर करे वरती। तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा जी बुधी दिल्ली में जंतर मंतर पार्क में वेठल जीनजी जो जशन। काकरोच जनता पार्टी तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा ऐं हुकूमत सां ॻाल्हियुनि बाद एहतजाज ख़तम करण जो ऐलान करे छॾियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03008 5569।
4: अस्सलाम वालेकुम। अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D-Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहुं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: महिरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डीपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो महिरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: पंजाब में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी। लाहौर, सरगोधा, हाफिज़ाबाद, वाड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में तूफ़ानी बरसाति सबबि गोॾे जेॾो पाणी भिजी वियो। गुजरात जे इलाइक़े कड़ियाल नवाल में बरसाति दौरान घर जे भित किरण सबबि टे भेण भाउ फोत। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां केतिरा ई कलाक गुज़रण बावजूदि पाणी निकाल न थियो।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बैदि गुज़िरियल राति सदर ट्रंप जे इहे हमलनि जी मंज़ूरी ॾिनी। ख़बर एजेंसीअ मूजिबि इहो वाज़े न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या जंग बंदी थी वई आहे, पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त वटसि हमला जारी रहण ऐं उन्हनि खे वधीक सख़्त करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी आहे, पर अकलमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।
0: ईरान पारां अमरीकी फ़ौज जे जारियत ख़िलाफ़ अमरीकी अॾनि ते जवाबी कार्रवाई में 11 रीफ्यूलिंग विड़ाक जहाज़ ऐं ड्रोन तबाह करण जी दवा। आसरा इनकलाब पंहिंजे बयान में चयो आहे त अमरीकी अॾनि ते हमले में हैंगर में बीठल हिकु F-15 जहाज़, हिकु P-8 जहाज़, C-17 ट्रांसपोर्ट जहाज़, 8 ॿियनि रीफ्यूलिंग जहाज़नि समेत 17 ड्रोन छॾिया आहिनि।
1: ईरानी फ़ौज जे खातबुलंबिया मर्कज़ी हेडक्वार्टर जे सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर चयो आहे त हू अमरीकी फ़ौज सां इम्कानी ज़मीनी जंग में मुक़ाबले जा मुंतज़िर आहिनि। दुआ आहे त अमरीकी फ़ौज जंग जे मैदान में संदन साम्हूं अचे त जीअं सिधी रीति मुक़ाबलो करे सघिजे। ब्रिगेडियर वधीक चयो आहे त दुश्मन सां हिकु ड्रिघी ऐं लाॻीतो जंग आहे जेका ख़तम थियण वारी न आहे। अमरीका ज़मीनी हमिलो कयो त ईरानी फ़ौज हुन जो मुक़ाबलो करण लाइ हर वक़्तु तयारु आहे।

भारत में मोदी सरकार पेपर लीक करण खिलाफ जेन जी के तरीका डो गोडा खोड़े छड़ा भारत जो तालीम वारो वजीर मुस्तैब नौजवान जो जंतर मंतर ते जशन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्तफी थियण बाद वजीर आजम दरेमदर प्रधान जी इस्तीफा मंजूर करे वरती तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा जी बुधी दिल्ली में जंतर मंतर पार्क में वेठल जेन जी जो जशन काकरोच जनता पार्टी तालीम वारे वजीर जी इस्तीफा हुकूमत से गाल बाद एहतजाज खत्म करण जो ऐलान करे छोड़ो।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: 75.5 माना तकरीबन 176 बिलियन टन, 176
1: जिलाए आजमोदा दवा आए सतन डीहन जी दवा सिर्फ 450 रुपयन में खात्माए दर्द मिलन जो हंद मेडी

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज, GAFM 94।

तो जी देखते हैं यहाँ पर अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हो गए हैं और हमें SMS करके बताते हैं कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सुबह का नाश्ता शायद उन्होंने कर लिया या नहीं किया, तो बिना नाश्ते के आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है नज़ीर खुसरो, कहते हैं फ्रॉम सोबतपुर बलोचिस्तान से, रिलेटेड टू सोबतपुर बलोचिस्तान से हमें ज्वाइन करते हैं वो, और साथ में

सवाल मेरा आप लोग सुनने से आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, शायद आप लोग तो पहुंच जाएगी मेरी आवाज। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरा जो सवाल है, सवाल ये कि आप लोगों ने आज ये बताना है कि अंग्रेजी का वो कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। तो देखते हैं आज ABCD में से, मतलब अंग्रेजी में से ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है। जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर कर रही हूँ मैं आप लोगों के सवाल के जवाब पर वेट। और जो इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सुनेंगे आज एक और खूबसूरत सा फैज़ अली की आवाज़ में एक और सॉन्ग, और जो कि हम सुनेंगे हमेशा, आपको पता है कि मैं सुनती हूँ कोई भी सॉन्ग, न्यू सॉन्ग होता है तो हमेशा आप लोगों के साथ ही सुन रही होती हूँ मैं। कभी भी कोई ऐसा सॉन्ग या कोई भी ऐसी वो नहीं होती कि मैं आप लोगों के बिना ही उसको एंजॉय करूँ। तो इस चीज़ से तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र।

0: GAFM 88.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9896-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जीअं मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
5: इंचार्ज मेट

और सवाल का जवाब भी आप लोगों ने सोच लिया होगा यकीनन, क्योंकि सवाल मेरा इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो आज इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो देखते हैं कि भाई अभी हमें कौन ज्वाइन करता है। अभी हमें ज्वाइन करते हैं अब्दुल्लाह, कहते हैं देयर इज नो प्रायोरिटी, देयर इज नो गेन, वी विल डेडिकेट इट टू डियर कजन बेवफा जमाल कंबर जी। वहाँ के कजन जो है वो बेवफा भी हो गए। अच्छा जी जी, जरूर जरूर। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं हमेशा की तरह, आज भी हमें सबसे पहले जो ज्वाइन किया है वो ज्वाइन किया है हमें कराची से मसरूर अहमद ने। और मसरूर अहमद कराची से हमें ज्वाइन करते हुए कहते हैं कि सकर के लिए कराची से मसरूर अहमद आरजे सना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आरजे सना जी। फैज अली का सॉन्ग सुनाएं जो कि मैं अभी सुना चुकी हूँ। ओके, और उसके अलावा कहते हैं जो आप सवाल दोगी अगर ठीक हुआ तो शीशे का दिल फैज अली। अरे वाह यार, ये तो मैंने आपका मैसेज ही नहीं पढ़ा था और मैंने सॉन्ग भी शीशे का दिल ही चलाया और अभी तक आपका जवाब नहीं आया, ये कैसे हो सकता है बताइए। मैंने फैजल की आवाज़ में जो सॉन्ग सर्च किया था वो मैंने खुद ही ये किया था शीशे का दिल ना, तो आपका मैसेज भी यही आया शीशे का दिल। और देखें ये तो आपका मैसेज सुबह का आया था और मैंने तो अपने पास एक सॉन्ग चलाया था, ये कैसे हो सकता है कि सेम सेम मैचिंग। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं सॉन्ग प्ले कर चुकी हूं और सवाल मैं आपको बताने लगी हूं। सवाल मेरा तो बताया था मैंने आपको, सवाल का जवाब अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं दिया है, तो मैं यही चाहूंगी कि आप मुझे सवाल का जवाब दें। सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि अंग्रेजी का वो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, तो ये पता लगाएं और मुझे भी बताएं। यहाँ पर टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है, एक घंटा संधि का हमारे पास टाइम रह गया है, तो अभी देखते हैं कि आप लोग मुझे कैसे बताते हैं, पता लगाते हैं।

जवाब देने के साथ अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी जरूर बताया करें, ताकि अगर आप सॉन्ग का नाम बताएंगे मुझे तो ही मैं आपका सॉन्ग पसंदीदा प्ले कर सकूंगी, ताकि मुझे और सुनने वालों को पता चल जाएगा कि यार आपका पसंदीदा सॉन्ग प्ले हुआ है। तो इसका मतलब है आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, आप भी समझ जाएंगे, आपके सुनने वाले भी समझ जाएंगे, बाकी लास्ट में तो मैं बता ही दूंगी। ओके जी, तो देखते हैं और इसके अलावा हमारे साथ और कौन मौजूद है। नजीर खुसो हमारे साथ मौजूद है। नजीर खुसो कहते हैं कि यार उनकी जो आधी बात जगह थी वो ये कहते हैं कि वी पीपल ओनली लव इजी थिंग्स, वी डोंट लव द वन हु सेंट देम इजी थिंग्स, सो व्हेन समथिंग इज डिफिकल्ट वी डू नॉट नो व्हाट टू डू नाउ। जी बिल्कुल ऐसा ही है नजीर खुसो, और साथ में कहते हैं सोबत मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो बस अभी क्या कह सकते हैं लोगों का हम, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रजाक, कहते हैं आपने लिखा है और कहते हैं ऑफ फौजिया सुन मैं समझी नहीं आपकी बात। उसके अलावा कहते हैं कि मोहम्मद खान कंबार और वफा जमाल कंबार, एजाज अली कंबर और हरी पोटम जलोरी मीरपुर खास से शो इज ऑन। जी शो तो मेरा ऑन है भाई, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक, और इतने सारे अपने नाम दिए हैं, ये सब सुन रहे हैं, इन सबको मेरा सलाम, और ये सब मुझे बताएं, और इसके अलावा आप भी मुझे बताएं कि आपका मेरे सवाल का जवाब क्या है, और जब जवाब आप मुझे देंगे तो अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बताइएगा, ताकि मैं आपका सॉन्ग प्ले कर सकूं। आप लोगों ने मुझे बताओ ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिससे मेरे सवाल नहीं सुना, भाई मैं रिपीट कर रही हूँ सुनते जाएं, कि अंग्रेजी का वो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। तो जाइए पता लगाइए और मुझे भी बताइए। इसके अलावा देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं सलाम और सना कैसी हो, शो नाइस, आप बहुत प्यारी हो मुझे सना, और आप तो अच्छा, और फिर कहते हैं कि आई एम वसीम, और थैंक यू सो मच वसीम, आप मुझे कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली ज़रूर बताया करें, और इसके अलावा कि थैंक यू सो मच, आपको मेरा शो अच्छा लगता है और आपने मुझे ज्वाइन किया है, पूरे पूरे दो घंटे आप मेरे साथ रहने वाले हैं, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, जैसा कि आपको पता है कि आपको मेरा साथ रहने वाला है, तभी यहाँ पर सुबह वहाँ पास 1 घंटा 10 मिनट बचे हैं, तो ये भी गुजर ही जाएंगे, पता ही नहीं चल रहा होता है। और कराची से मसरूर अहमद हमें जवाब देते हुए कहते हैं कि भाई कि सवाल का जवाब है, अच्छा आपने मुझे जो जवाब बताया है वो एक वर्ड नहीं है ना, मतलब एक अल्फाबेट नहीं है ना, आपने वर्ड बताया है। मैंने आपको पूछा कि अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अल्फाबेट, अल्फाबेट मींस ए बी सी डी ई एफ जू जेड के अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, तो आपने वो मुझे पता लगाना है, वो बताना है मसरूर अहमद। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि ये वर्ड है, तो वर्ड मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा है आपसे कि आपने मुझे अल्फाबेट बताना है, तो अल्फाबेट आप मुझे बताएं अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ मैं इंतजार, और उसके अलावा और फिर आपका सॉन्ग तो मैं ऑलरेडी पहले ही चला चुकी हूँ, हालांकि मैंने आपकी वजह आपका मैसेज मैंने बहुत बाद में देखा था, वो तो मैंने वैसे चलाया था। इसके अलावा ऐसी सॉन्ग तो वो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगर आपका सवाल ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग प्ले जरूर करेंगे, और यकीन है कि आपने वो फैज़ अली की आवाज़ में वाला सॉन्ग जो मैंने प्ले किया था। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे और भी लोग, लेकिन मैं चाहूंगी कि इससे पहले एक और हम सॉन्ग सुनते हैं।

0: तो जी जैसे कि सुन रही थी आप लोग और मेरे साथ एक सॉन्ग और जाने इस दिल का हाल क्या होगा। हाँ वाकई यार इतना अच्छा हसीन मौसम है और देख के चुके वाकई पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यार हमें कहता है हमारे साथ मौजूद हैं लाड़काना से, कहते हैं लियाकत अली खाकरानी लाड़काना अस्सलाम वालेकुम। अदी क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। जवाब ओके, जवाब भी उन्होंने मुझे दिया है और उसके अलावा मुझे कहते हैं कि कैसे हैं आप जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं लियाकत अली खाकरानी सर आपने मुझे लाड़काना है। तो जी बहुत खुशी हुई है ऐसे आपने मुझे ज्वाइन कर दे ओनली और सुबह कह रहे थे 1 बजे तक, जैसा कि आपको पता है कि आपका मेरा साथ रहता है पूरे 2 घंटे के लिए। तो आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें जमा कर लेके रखने लेनी होती हैं और इन 2 घंटे के अंदर हमें इतनी सारी बातें करनी होती हैं कि सारा हफ्ता हमारा इन बातों में 2 घंटे में गुजर जाए। 2 घंटे में नजर आए यार, बकायदा कि 2 घंटे में हमारे साथ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप लोग तो इतना डरे बैठे होते हैं, शायद सो रहे होते हैं यार, लेकिन नींद तो पूरी हो जानी चाहिए। गर्मियां हैं ना भी हो तो बंदा इतना देर तक सो ही नहीं पाता क्योंकि लाइट्स तंग कर रही होती हैं, कभी कुछ मसले होते हैं, 100 मसले होते हैं जो कि हमारी नींद पूरी हो ना होने देते हैं और हम लोग फिर भी जल्दी उठ जाते हैं। नींद अगर आ भी रही होती है ना तो तभी हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा या आप लोगों के पास कुछ ऐसी अलोखी लाइट है जो जाती ही नहीं है, तो वो भी मुझे जरूर बताएं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम होता है वहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने का, न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाएंगे क्योंकि न्यूज़ का भी पता होना जरूरी है कि भाई क्या चल रहा है बाहर। तो अभी हम जाएंगे न्यूज़ ब्रेक की जाने पर, वापस आएंगे, वापस आके सुनेंगे और मजेदार सॉन्ग्स और रहेगा जब तक मेरे साथ। और कहीं जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं न्यूज़ पे, न्यूज़ सुनते हैं कि यार मुल्क में क्या हो रहा है। तो चलते हैं भाई, रहेगा मेरे साथ।
1: जीए सखर FM 88

तैयारियां शहीद बेनजीराबाद में 27 जुलाई तई हल्की तो किथे तेज सीएम हाउस में रेबन इमरजेंसी डेस्क कायम करे छी लागापल इदारन के डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बाद सदर ट्रंप जे हमलनि जी ख़ैबर इज़न वाज़ न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो त सख़्त करण जो अख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि में मुकमल तबाही थी आहे पर अकलमंदीअ वारी हिकमत अमली आहे त ईरान सां वञे। टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विहण जी ख़्वाहिश बि ॾेखारे छॾी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा अपर साइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराप मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कार कढ़ेतर फ्यूल एडजस्टमेंट जी एडजस्टमेंट मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्निक ग्रानी इरशाद लाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद रखे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान सुबह 9:55 ते सिर्फ GA नेटवर्क ते। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, बालों की फिक्र खत्म। लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003388। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मदद, रेजुविनेशन, साफ तरोतवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर, रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569।

0: लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-406 तौकीर 806-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम।
3: अछो परेशान आ
1: दुकान खोलियो तम छा कजे
3: अदा दुकान आई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गो मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किसी जिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर रिस्त बुदा
0: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हापुर
4: राप्ते 301-399-36।

0: It's 12:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर गिम्स अस्पताल गंबड़ डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
4: रात मौजूद, और जैसे कि आपको पता है कि यार 12:15 हो चुके हैं, और 12:15 में बहुत सारे मतलब टाइम गुजर गया है हमारा यार, और यहाँ मस्त 45 मिनट्स रिमेनिंग बचे हैं जिसमें हमें बहुत सारी करनी है। तो जी मैं आपको बताऊं कि देखते हैं पहले तो कि हमें और कौन ज्वाइन करता है, हमें ज्वाइन कौन कौन करते हैं भाई।

साथ मौजूद हैं सकर के लिए खालिक लशारी जाइज से और अल्लाह बनता है फौजिया। अच्छा फौजिया प्ले करें, फौजिया तो प्ले कर रहे हो, यहाँ पर आपका जवाब है वो मैंने देख लिया, जरूर प्ले हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा

जी और फेसबुक कौन ज्वाइन करता है? फेसबुक हमें ज्वाइन करते हैं उबदार अली, हमें हमारे सवाल का जवाब देते हुए ज्वाइन करते हैं और जवाब आपने मुझे बिल्कुल ठीक दिया है मतलब। और अगर आपने कोई फरमाइश सॉन्ग है सुनना है तो वो मुझे बता दें। इकबाल अशारी, आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपका जो जवाब है आपने मुझे दिया था, आप मुझे कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग का नाम बताएं, अगर आपका जवाब ठीक है तो हम जरूर कुछ सॉन्ग प्ले करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं गुल यासीन नाज, कहते हैं कि दिल नशीन रेडियो लिसनर्स क्लब मुल्तान, ग्रीटिंग फ्रॉम गुलनास यासीन और मोहम्मद हफीज और रहमान बकर फौजी असलम मोहम्मद इकबाल स्कर्दू। तो जी कैसे हैं आप सब और इतने सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, गुल यासीन नाज आप मुझे सुन रहे हैं, तो है ऐसे ही आप मुझे ज्वाइन करते रहा करें। ओनली हर संडे मैं रहती हूँ आपके साथ पूरे दो घंटे के लिए, आपका मेरा साथ रहता है। आओ बात करें मैं भी ताजे सना के साथ, दिल की बात खुशी की बात हर बात यहाँ फन का वीकेंड डोज, डोंट मिस इट। तो यार आपने क्या करना है, मुझसे बातें करनी है, बहुत सारी वीकेंड की सारी बातें जमा करके रख लेनी है, उठना है सुबह सुबह, नाश्ता भी नहीं करना, नाश्ता करके भी अगर बात करेंगे तो भी ठीक है, अगर नाश्ता नहीं भी कर रहे तो आप मुझसे बात करने आ जाएं तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, मजे मजे के और सॉन्ग सुनते हैं। जैसे कि आपको पता है डेली बेसिस पे हम लोग न्यू सॉन्ग सुन रहे होते हैं हर संडे आपकी फरमाइश के मुताबिक, तो सिर्फ एक आप ही नहीं बाकी हम सब आपका सॉन्ग सुन रहे होते हैं जो आप हमें बताते हैं।

अलावा वहाँ पे और भी लोग बहुत सारे मौजूद था जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, जैसे गुल यासिन नाजाम हमारे साथ मौजूद है, और इस तरीके जिसने भी अभी मेरा शो सुना है, जिसने मुझे ज्वाइन किया है, कमेंट करने के लिए परेशान है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि जो मेरे सवाल है, सवाल मेरा ये है, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अंग्रेजी का ऐसा वो कौन सा अल्फाबेट है

जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। इसका टाइम मैं आपको देती हूँ 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद मैं आपसे इसका जवाब कलेक्ट कर लूंगी। और जो मुझे ज्वाइन करने के लिए परेशान है, तो जी मुझे परेशान नहीं है, आपको परेशान होने की मुझसे जरूरत करना है 888 पे सिंपल एज के आर लिख के अपना सिटी का नाम लिख के आप मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मेरे सवाल का जवाब। और अगर आपको कोई और बात करनी है, शो कैसा लगता है, आपने मुझे कब ज्वाइन किया था, या मुझे कभी सब आप मुझे SMS के जरिए बता सकते हैं। और अलावा जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है फेसबुक पे, तो जी फेसबुक पे जाइए, फेसबुक को ऑन करिए और GFM88 पेज आपने ओपन कर लिया, मेरे नाम को फिलहाल आपको दिख जाता है विताज सना के साथ, और बात करें में शामिल आप लोग मेरे साथ हो जाते हैं। तो देर किए बगैर मेरी आवाज़ सुनने के साथ साथ आपने क्या पर जाके लाइक करना, कमेंट करना, हमने पता चल जाता है कि किसने मेरा पेज को ओपन किया था और सुना था मुझे। 5 मिनट दे दिए आप देने के लिए आप लोगों को, तो जब तक यहाँ पर एक और सॉन्ग मेरे पास, वो सॉन्ग प्ले करते हैं और सॉन्ग को सुनते हैं। तो आइए करते हैं इस सॉन्ग को एंजॉय साथ में।

जैसा कि सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग सॉन्ग, और ये एक पाकिस्तानी सॉन्ग है। आपको पता है कि यार सिंधी कल्चर पे सॉन्ग्स बने हुए हैं, तो हमारा सिंध तो सिंध है ना भाई, तो कल्चर है हमारा, तो उससे भी सॉन्ग होना ज़रूरी था जो कि हमने सुना। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर टाइम हो गया है, 5 मिनट आपको मैंने दिए थे कि आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दे देंगे, तो देखते हैं अभी कि किसने और सवाल का जवाब दिया हो। तो हमारे साथ मौजूद हैं सकर के, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सना जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और कहते हैं शो नाइस वॉइस, आपकी टॉपिक का जवाब, और जवाब आई एम माजिद सोलंगी फ्रॉम सकर। माजिद सोलंगी आप सकर से हैं, और आपने मुझे जो जवाब दिया है उसके बाद उनका नाम नहीं बताया, और जो जवाब है जवाब दिया। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे बताएं अंग्रेजी का ऐसा कौन सा एल्फ जिसमें सबसे नहीं होता है, तो एक वर्ड का नाम बताया है, अल्फाबेट नहीं बताया, जस्ट एक अल्फाबेट बताना है कि जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, वो अल्फाबेट बताना है। खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने मुझे जवाब दिया मेरे सवाल का, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका कोई आप नहीं समझे या खुश था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मुझे ज्वाइन किया, ये चीज़ अच्छी है आपकी, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है। और हर संडे मैं रहती हूँ आपके साथ, आओ बात करें, मैं पूरे 2 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेरा साथ, आओ बात करें मैं, तो आओ बात करें मैं यार, इतनी सारी बातें होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं। तो इसी तरीके से ये 2 घंटे हमारे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया है हमारा, अभी मैं आपको जवाब बताती हूँ जी। लेकिन अभी देखते हैं इससे पहले कि और किसका जवाब है जो राइट है।

बहुत सारे लोग इंस्टा में जवाब दिया लेकिन सॉन्ग का नाम नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, जब भी मैं आज अपने पसंद के सॉन्ग चला रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पसंद का सॉन्ग सुन रहे हैं तो डेडिकेट ये सब आपको जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी जो मेरे सवाल का जवाब था, मेरा सवाल सबसे पहले ये था, देखें सुने आप लोग के मेरा सबसे सवाल था, सवाल मेरा आप लोगों से ये था कि आप लोगों ने ये बताना था कि अंग्रेजी का ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जिसमें पानी होता है। तो इसका आंसर था सी, सी इज द राइट आंसर, सी मतलब सी। आपको पता है कि अगर ए सी ए लिखेंगे तब भी वो जाकर सी बन जाता है, लेकिन अगर आप अल्फाबेट में देखें तो जस्ट सी भी एक सी है, तो जो सबसे ज्यादा पानी होता है। तो ये सी इसका आंसर था, जिसने भी दिया है वो आज का विनर है मेरे से, वो विन कर चुके हैं और सबके लिए। और जिसने मुझे जवाब दिया है, जिसने सवाल नहीं समझा था कोई बात नहीं, आपने जवाब लिस्ट में तो आपका नाम है ना भाई, तो जिसने मुझे जवाब दिया है मैं अपने पसंद का ही सॉन्ग चलाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे ऐसा कोई सॉन्ग नहीं बताया जो मैं प्ले करूं। तो आज तो मेरी ही पसंद के सॉन्ग सुने जा रहे हैं।

0: बताऊंगी यहाँ पर टाइम होता है, छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, जैसे ही ब्रेक पे जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करते हैं मजे मजे की बातें, जब तक रहेगा मेरे साथ, और सुनेंगे इसके बाद मजे मजे के सॉन्ग।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी क्रीम, असली ग्लो हर

0: का शो। खुशखबरी, क्या आप बालों की झड़झर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-8।
1: रोशनी का काफिला, तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर केमिस्ट्री लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, दान और वहाँ मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल, 03-00-00-27-234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03-01-38-65-453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बायर दस्तयाब।
2: मेहरान आयरन स्टोर पेट्रोल पंप नेशनल
3: गुलाम नबी 3-00-32-04-372-02-42-46-01-00।
2: इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएच इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अर्ब छह आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो लाइ 0-6-96-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो फिर
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो छा कजे
2: अदा दुकान जी थई
1: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
2: पर इश्तिहारात आम इतला सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म हलंदी आहे
1: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड में रहता है मंसूर अहमद में 301-383-47
4: मेहराब तो आवाज भी मेहराबपुर की सुनते रहो जी FM 94

0: कि मैंने आपको दूसरे लोग सुने के और कोई भी सॉन्ग होता है तो मैं हमेशा अकेले नहीं सुनती, हमेशा आप लोगों के साथ सुन रही होती हूँ। और ये सारे सॉन्ग आज डेडिकेट भी सिर्फ आप लोगों को हैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए और मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, तो जरूरी नहीं कि अगर आप लोग राइट जवाब देते हैं तो ही हम लोग सॉन्ग प्ले करें। ये तो मेरी अपनी विश थी कि अगर आप लोगों ने मुझे जवाब भी दिया है तो यार मैं आज तो आपको पसंद का सॉन्ग सुनाऊंगी। अच्छा जी, हमारे पास एक फरमाइश आती है, कहते हैं कि आरजे सना फुल सॉन्ग सुनाओ, शायद बाबर सॉन्ग है ना ना मे दिल, माजे सुनंगी कहते हैं हमें। ओके जी, जरूर जरूर सुनाने की कोशिश करते हैं हम आपको टाइम के साथ, टाइम हमारे पास होता है अभी एक की तरफ जाने का। जी जैसे ही वापस आते हैं तो आपको पसंद का सॉन्ग भी प्ले करते हैं त्रिवेदी का मेरे साथ।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। 44 सालों जो तजुर्बो, हजारे

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग इन्फॉर्मेशन डेस्क, मैंने आपको बताया था कि हम लोग सुनेंगे तो कोई भी सॉन्ग, अकेले नहीं सुनेंगे तो सारे साथ। तो ये इन्फॉर्मेशन सॉन्ग मैं सुन रही थी आप लोगों के साथ, शायद अली बाबर की आवाज़ में सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, अच्छा सॉन्ग था तो जो कि हमने सुना साथ में। तो जी इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आवाज़ टाइम बहुत ही कम रह गया है, रिमेनिंग सिर्फ 8 से 9 मिनट रह गए हैं और 9 मिनट के अंदर, अच्छा मैंने, मेरे पास एक फरमाइश थी जो कि मुझे की है नज़ीर खसरो, कहते हैं कि आप फायज़ा नहीं, कहते हैं कि आप मंजूर सगरानी की आवाज़ में, नाम है सॉन्ग का खिल सोना खिल, आप ये सॉन्ग प्ले करें। जवाब उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो सॉन्ग आपने मुझे बताया है ना नज़ीर खसरो, आपने जो सॉन्ग बताया ये थोड़ा ओल्ड हो गया, ओल्ड टाइप हो गया, बंदा उठा हुआ भी बंदा सो जाएगा, हालांकि अभी तो उठने का टाइम है लेकिन अभी तो उठे हुए बंदे सुनेंगे। तो मैं आपको बोलती हूँ कोई उधम वाले सॉन्ग बताया करें, तो जो कि मैं आपको प्ले करूंगी और सुनाऊंगी। तो जी यहाँ पर आज आपने इतने सारे सॉन्ग मेरी पसंद के सुने, तो अभी भी आप मेरी पसंद का ही सॉन्ग सुनेंगे। और यहाँ पर डेडिकेट किया है हर एक सॉन्ग, तो मैंने आज आप सबको ही, क्योंकि डेडिकेट आप सबको ही मैंने सॉन्ग किए हैं अपने, तो अभी भी जो मैं लास्ट में सॉन्ग प्ले करती जाऊंगी तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ही प्ले करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आज इतने सारे सॉन्ग हमने सुने हैं, सारे मेरी पसंद के सुने हैं, और क्योंकि आप लोगों ने अपने सॉन्ग नहीं बताया, शायद मेरा सवाल आप लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा से एक बात कहती हूँ, अगर आपको जवाब ये नहीं सोचा करें कि गलत भी है ठीक भी है तो कोई मसला नहीं, अगर गलत भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है यार। और ये होता है कि कम से कम आप लोग मुझे जवाब तो देते हैं, जवाब देने वाली लिस्ट में तो आ जाते हैं, तो ये कि डेडिकेट जब फोन कर इतनी खुशी हो जाती है, तो आप लोग भी मुझे जवाब दिया करें टाइमली और इस लिस्ट में शामिल हुआ करें मेरे साथ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर एक सॉन्ग है जो मैं अभी प्ले करूँगी, और ये सॉन्ग है फलक शब्बीर एंड सारा खान का। तो अब आप सोचें वो कौन सा सॉन्ग है, सोचें क्योंकि लास्ट में मैं वो सॉन्ग करूँगी प्ले, क्योंकि लास्ट में जब वो मैं छोटा सा सॉन्ग है वो लास्ट में प्ले करते जाएंगे तो क्या ही बात है उस सॉन्ग की। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे टाइमली ज्वाइन करते हैं, मुझे मेरे साथ रहते हैं, तो मैं भी आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों से बातें करने के लिए आती हूं तो सिर्फ इसी वजह से आती हूं कि यार आप लोगों के साथ एक नई बातें करने को मिलती हैं, एक हमारी जो टेंशन होती है वो थोड़ी खत्म हो जाती है, तो मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूं, तो अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए ही आप और मैं एक साथ बात कर रहे होते हैं। 2 घंटे हमारे साथ में होते हैं, सुबह 11 से 1 बजे तक जैसा कि रहते हैं आप और मेरे साथ, आप और मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग गाड़ी चला रहे होते, ड्राइविंग करते हुए तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं अगर खुद ड्राइविंग कर रही होती ना, मैं खुद FM चलाती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं सुनूं आरजी इसको सुनूं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था सॉन्ग्स ने सॉन्ग्स की, और उनके जो सवाल होते हैं उनका जवाब दें, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। तो ऐसे ही आप जो है ना, अगर आप मेरे सवाल सुन रहे होते हैं ड्राइविंग के दौरान, आप उठे हैं घर में हैं जहाँ पर भी हैं, ऑफिस में, तो आज संडे है छुट्टी होगी, अगर कोई वर्कआउट करने के लिए बाहर भी गया है तो कोई बात नहीं, अगर आप सुन रहे हैं मुझे ज्वाइन भी किया तो यार इससे अच्छी और क्या बात है, अगर आप, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे मुझसे बात कर रहे हैं सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप मुझे एक छोटा सा सवाल मेरा होता है वो आप जवाब दे दिया करें, दिमाग का कोई जवाब नहीं होता, वो दिमाग का कोई सवाल नहीं होता, वो एक आपने थोड़ा सा आंखें बंद करके भी अगर आप वो मेरा सवाल दोबारा से अपने जहन में रिपीट करेंगे तो आपको जवाब वैसे ही मिल जाएगा। तो बहुत आसान से सवाल लेके आती हूँ हमेशा हर संडे, तो इस संडे भी मैं नेक्स्ट संडे आऊंगी तब भी एक छोटा सा प्यारा सा सवाल लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आपने मुझे टाइमली जवाब देना होता है, और उसके साथ क्या करना है, अपने फरमाइश सॉन्ग जरूर बताया करें, ताकि अगर आपका जवाब ठीक हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा कि आप समझ जाएंगे कि यार आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक अल्लाह हाफिज करने का, टाटा बाय बाय करने का, क्योंकि मिलेंगे अभी जाएंगे तो अगले इतवार को हम दोबारा मिलेंगे ना भाई, तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पर एक सॉन्ग मैं प्ले करती चलती हूँ, ये सब सॉन्ग जो है आप लोगों के लिए डेडिकेट करती हूँ, आप सब जो मेरे साथ मौजूद थे पूरे 2 घंटे के लिए, मुझे बर्दाश्त किया जैसा कि मैंने आप लोगों को बर्दाश्त किया, अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, खैर हंसते मुस्कुराते रहें, जिंदगी है और कब रुक जाए पता ही नहीं चलता इस सांस का, तो कोई बात नहीं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप हमेशा आप लोग सारे खुश रहें, ऐसे आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें, और मिलेंगे अगले इतवार में नए सवाल के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं यहाँ पर एक सवाल आपको बताने, वो सवाल सॉरी सॉन्ग सुनाने लगी हूँ, सॉन्ग सुनेंगे साथ में, उसके बाद जाएंगे अपने अपने कामों पर, तो रहिएगा मेरे साथ और मिलेंगे अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। तो सॉन्ग कर दिया है जी मैंने प्ले, तो इस सॉन्ग को भी करते हैं एंजॉय, जब तक के लिए अल्लाह।

मुल्क में गैर कानूनी तौर तरसियल अफगाननि जी वापसीअ जो सिलसिलो जारी। वधीक 1826 अफगानी पंहिंजे ॾेह रवाना। दस्तावेज़नि मूजिब गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान POR कार्ड होल्डर अफगान महाजरनि जी रज़ाकारी तौर वापसी, 202 ECC कार्ड होल्डर ऐं 1001 गैर कानूनी तौर तरसियल अफगाननि खे वापसि पंहिंजे ॾेह रवानो कयो वियो। KP जे रस्ते 190 अफगाननि खे डिपोर्ट कयो वियो। हिन ताईं 4,23,542 POR कार्ड होल्डर अफगाननि खे वापसि माणियो वियो। 1,15,302 ECC कार्ड होल्डर ऐं 9,46,898 गैर कानूनी तौर तरसियल अफगाननि खे वापसि ॾेह माणियो वियो। बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन अल अज़म जारी। 16 भारतीय हामी दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जूं असरायतियूं कारवायूं। अल अज़म में हिन ताईं भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारी चुका। पुलिकन, हुमराणी, खदकूचा ऐं मस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ ठाकनि खे तबाह करे बारूदी मवाद ऐं हथियार हथ कया विया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कारवायूं जारी रहंदियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमला रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ईरान ते लगातार ॿिनि हफ़्तनि ताईं जारी हमलनि बाद गुज़िरियल राति सदर ट्रंप हमलनि जी मंज़ूरी न ॾिनी। ख़बर एजेंसीअ मूजिब इहो वाज़े न आहे त हमला हिकु ॾींहुं रोकिया विया आहिनि या जंगबंदी थी वई आहे, पर ॿिनि हफ़्तनि खां जारी हमलनि जो तसलसुल टुटी वियो आहे। सदर ट्रंप मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे चयो त वटि हमला जारी रखण ऐं हुननि खे वधीक सख़्त करण जो इख़्तियार मौजूदु आहे। हमलनि सबबि ईरान में मुकमल तबाही थी सघे थी, पर अकुलमंदीअ वारी हिकमत अमली इहा आहे त ईरान सां डील कई वञे। सदर ट्रंप टियों ऐं चोथों भेरो बि सदारती इलेक्शन विढ़ण जी ख़्वाहिश जो इज़हार कयो। इलेक्शन विढ़ण जी

जदीद अस्पताल जो इफ्तिताह कर घर वजीर डॉक्टर्स नर्सिस तिबी अमले से मुलाकात कर इंसानियत की भरपूर खिदमत की तलकीन कई घर वजीर ओपीडी मुख्तलिफ वार्ड्स इलाज की जदीद सहूलतों से लैस अस्पताल की सख्त जरूरत हुई तुर्बत की मकामी आबादी के भी इलाज जो बेहतरीन सहूलतों मिल वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी के अस्पताल में फराम कल तिबी सहूलतों बाबत ब्रीफिंग दिनी वही आईजीएफसी मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान फोर्स की पेशेवरानी तरबियत ए फील्ड ऑपरेशन की आगाही दिनी घर वजीर एफसी बलोचिस्तान दखण के पेशेवरानी तैयारियों के सराहो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
6: ओ सनम सोनो जे साली
7: अली अली।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

भी धूप में जाते हैं, उनका कोई काम होता है, बस सुबह उठते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो आप बस थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी व्हाइटिश लवली क्रीम की अपने चेहरे पर लगा लीजिए, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, आपके चेहरे की स्किन पर प्रोटेक्शन भी होती रहेगी। वो कैसे जी? वो ऐसे, क्योंकि व्हाइटिश लवली क्रीम के अंदर आप लोगों को 30 विटामिंस के कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं, और 30 विटामिंस के कैप्सूल्स हैं जो कि भाई एक से बढ़कर एक ही, अगर आपकी स्किन पर किसी भी विटामिन की कमी हो तो उसको पूरा करेगा। और उसके साथ साथ जो है ना, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि आप लोगों के चेहरे पर जो ये सूरज के खतरनाक से असरात आते हैं ना, उनसे भी आपको बचाएगी। तो व्हाइटिश लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार आप इस्तेमाल करेंगे, लगाने के तरीकेकार बिल्कुल, ये फेयरनेस क्रीम है तो आप अपना फेस वॉश करके उसके बाद ही लगाइएगा। और अगर आप कोई भी अच्छा साबुन या फिर फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो आपके पास व्हाइटिश का सो भी मौजूद है एंड व्हाइटिश का फेस वॉश भी मौजूद है। आप लोगों के ऊपर है कि आप फेस वॉश लगाते हैं या फिर सोप लगाते हैं, दोनों चीजें बहुत कमाल की है, दोनों चीजें नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है, दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। जैसे कि साथ साथ अगर आप एक्ने से शदीद वाला परेशान है, एक्ने आपकी जान नहीं छोड़ रहे, तो आप ऐसा काम कीजिए, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए ही तैयार किया गया है, और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगा और साथ साथ आपके चेहरे पर जितने भी एक्ने हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक्ने प्रॉब्लम्स हो या फिर एक्ने के निशानात हो या फिर आपके चेहरे पर वो जो है ना, काफी सारे निशानात आ जाते हैं, चाहे वो चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, कोई भी इस तरह का निशान जिसको ना हमेशा तव्हांजे चेहरे ते मौजूद आहे, तव्हां नंढपण खां ॾिसंदा अचो था, ऐं तव्हांजी इहा ख़्वाहिश त बाबा इहो एक्ने आहे या एक्ने जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, कोई कट जो निशान आहे, इहो ख़तम थी वञे ऐं असांजी स्किन सवा बेदाग ऐं वीआईपी थी वञे, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो इस्तेमाल करे सघो था। ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तव्हांजी आसानी जे लाइ तयारु कयो वियो आहे, यानी कि हिन खे अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब खे इस्तेमालु कंदा तव्हां सुबुह जो बि ऐं राति जो बि, ॿ टाइम तव्हां लॻाईंदा अगरि तव्हांजे चेहरे ते घणा सारा एक्ने आहिनि, यानी कि ओ हेॾा सारा एक्ने आहिनि, त पोइ तव्हां टे मरतबा बि लॻाए सघो था, यानी कि सुबुह जो बि लॻाईंदा, मंझंदि जो बि लॻाईंदा ऐं राति जो बि लॻाईंदा। लॻाइण खां पहिरीं तव्हां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो, ऐं फेस वॉश करण सां ईअं थींदो आहे त तव्हांजी स्किन सफ़ा क्लीन थी वेंदी, ऐं क्लीन स्किन जो जॾहिं तव्हां ख़्यालु रखंदा आहियो त तव्हांजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो अची वेंदो आहे। सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिजो, जिन माण्हुनि जे चेहरे ते निशान आहिनि, एक्ने आहिनि, ऐं खोड़ साड़ियूं ट्यूब जो कि तव्हांजे चेहरे खे परेशान कनि पियूं, ऐं उन खां अलावा तव्हांजी ख़ूबसूरती में रुकावट अचनि पियूं, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लाज़मी ट्राए करे ॾिसो। उन खां अलावा व्हाइट एज जी ब्यूटी क्रीम आहे, त व्हाइट एज जी ब्यूटी क्रीम जी अगरि ॻाल्हि कयूं पिया, त व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हिकु नाइट क्रीम आहे जंहिंखे तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा। उन खां अलावा व्हाइट एज जी जेका ब्यूटी क्रीम आहे या नाइट क्रीम आहे, त राति जे टाइम इस्तेमालु करण सां तव्हांखे कहिड़ा फ़ाइदा पहुची सघनि था? सो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे सफ़ा वी आई पी बणाए छॾींदी आहे, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की ख़ूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन सी ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नरम मुलायम और तरतराज़ा बनाने के लिए मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, चेहरे की बेरौनकी हो, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, जबकि आपकी जल्द जो है वो ज़्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो लड़के हो लड़कियाँ हो, आप सारे लोग ही व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करने के तरीकेकार बिल्कुल ये हैं कि आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, ब्यूटी सोप हो या फिर फेस वॉश हो, इन दोनों चीजों में से कोई भी चीज आप अप्लाई करेंगे उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई जो है ना, आप कितने अच्छे और कितने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इंतखाब कर चुके हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी ये नाइट क्रीम है, तो रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम यहाँ पर व्हाइट एज के फेस वॉश की बात करते हैं, तो व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ये जनाब विटामिन सी से तैयार किया गया है। जब आप परचेज करेंगे तो आप लोगों को ये सोचेंगे ना कि व्हाइट एज का जो सोप है वो बिल्कुल डिटो कॉपी है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो ये फेस वॉश के मामले में आपको ये ना लगे कि भाई दुकानदार कहीं हमें चूना तो नहीं लगा रहा। तो आपको बताते चलूं कि व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, वो ऑरेंज कलर का है, वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। उसके ऊपर जो है ना, वो ऑरेंजेस का आपको फोटो भी नजर आएगा, और उसके अलावा ये आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आपको कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ होगा व्हाइट एज विटामिन सी फेस वॉश, जो कि आप इस्तेमाल करें। बहुत ही क्रीमी सा फेस वॉश है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि ये आप तमाम प्रोडक्ट जो है ये इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खूबसूरती आपको वापस मिल जाएगी, और इस्तेमाल करने का ये फायदा आपको मिलेगा कि जब आप अपनी खूबसूरती को वापस लाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की खूबसूरती जो होती है वो कहीं गायब सी हो जाती है, और वो इस बात में भी परेशान होते हैं कि भाई हाणे छा थींदो, त हाणे बाबा इहो थींदो त तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो, तव्हांजे एरिया में नथा मिलनि, परेशान छो आहियो बाबा? डायल कंदा 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 या वरी
233-8-4309 नंबर आ जेको तमा डायल करी पांजे करीबी जनरल स्टोर से वाइट हेजा तमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सको था मुके बुधायो त फेसबुक ते लाइव सही पई हले सो तो मुके थोड़ो पांजे नेटवर्क में मसलो लगी पयो अगर लाइव सही हले थी त ठीक आ न त पो थोड़ो गुचमुच कयूं।

को लाइक और शेयर करते रहिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। ओके, क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस हैं और आपकी बातें हैं। और यहाँ पर जी, मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी आने वाली जनरेशंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी मीर मुमताज अली जतोई, वालेकुम अस्सलाम के थे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी, माशाल्लाह जबरदस्त शो गोट आगा खान जतोई लाड़काना से, मीर मुमताज अली जतोई, सागर जतोई और हे मुगेरी मोहम्मद मुदस्सर जतोई, सब भाइयों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। दर्दी दिल कहती है कि हाँ मैं भी जिंदा हूँ। माशाल्लाह जिंदा ही रहे। अमानुल्लाह शेख हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? मैं सुन रहा हूँ कश्मीर से और मेरे साथ है उस्ताद नवाब शेख, आपकी बातें अच्छा कहते हैं, आपकी बातें खूब इंजॉय कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मेरी तरफ से पूरे कश्मीर वालों को बहुत सारी दुआएं, अल्लाह सलामत रखे, मुसलमानों को खुश रखें और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और हैं जी अब्दुल अहद अब्बासी कहते हैं, हम आने वाली जनरेशन को ना आने का मशवरा देंगे। अच्छा मशवरा है वैसे। अच्छा निधि कहती है कि टॉपिक मैं तो यही मैसेज दूंगी, कभी किसी पर यकीन नहीं करना इतनी जल्दी। वो तो हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन आने वाली जनरेशंस का तो कुछ पता नहीं होगा ना, वो कितनी ज्यादा चालाक होंगी, तो उनको ऐसा कौन सा मशवरा हो जो कि देना चाहिए, मुझे ये लगता है, जल्दी बताइए। और है जी हमारे साथ ये चाचा खाले जुड़े जो कहते हैं सीनियर एफर्ट्स, अच्छा कहते हैं सीनियर एफर्ट्स ट्रुथ स्पीक्स एंड ट्रुथ इन ट्रस्ट इन अल्लाह पाक ऑलवेज यू टॉपिक आंसर से जो बेटा। ओके जी बहुत बढ़िया, न दुआ न सलाम। और नखा अलावा स्मार्टो गोपांग कहते हैं टॉपिक आंसर, आने वाली जनरेशन को ये पैगाम है सिर्फ डिग्री हासिल करनी नहीं है बल्कि इल्म किरदार और इंसानियत हासिल करने वाले बनो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से पहचानेगी लेकिन तुम्हारा किरदार तुम्हें इज्जत दिलाएगा, टेक्नोलॉजी को अपना हाँ टूल बनाओ, अपना मुल्क नहीं अपना मालिक नहीं, सही सवाल करने से मत डरो और गलती से सीखो और अपने ख्वाबों को सिर्फ देखो नहीं उनके लिए मेहनत करो, याद रखो कल की दुनिया उन्हीं लोगों की होगी जो आज लोगों को बेहतर बनने का फैसला करते हैं। ओके जी क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और आदिल कहते हैं ये सॉन्ग लगाओ, थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे, अगर ये सही हो गया तो मैं आप सबके गाने लगाती हूँ, ठीक है। और नखा अलावा किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक पर मेरा हाथ जोड़कर यही इल्तिजा होगी, ये तो भाई मेरे ख्याल में ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, तो ये आप इल्तिजा जो ना उनसे मत ही कीजिए, क्या पता वो आपकी आने वाली जनरेशन आपसे दो कदम आगे हो। और हो भी सकता है।

हाँ जी निधिड़ी देख रही हूँ तभी तो बोल रही हूँ। ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए आप वाइट एज का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अली मुर्तजा कहते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, कैफा हालुक या हबीबी, हालुक सफा भलाएं ताबुदा किया है।

अच्छा महावन सुमान कहते टॉपिक न्यू जनरेशन इतनी एक्सपर्ट है, दो चार हमें ही सुना देंगे। हाँ जी बात तो बिल्कुल आपकी सही है। और किशोर भाई कहते हैं कि आज छुट्टी के दिन आई हो, थोड़ा रेस्ट करने देती मुझे, कल करने दिया था ना कहते मैं छुट्टी की, तो मैंने छुट्टी की तो आपने जिद में ऐसा ही था। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, मजे में है। निदड़ी कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कर रही हूँ, करके मैं तो प्यारी एंड क्यूट बन गई हूँ, अब आप सब की बारी है, यूज करो और प्यारे प्यारे बन जाओ। क्या बात है भैया, निदड़ी जो चमन वटू ता सब। ओके जो नखा अलावा एसन आर बानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम एंड मुल इस्लाम मदर। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, लाड़कना की पहचान, कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी जिंदा हूँ और आपके साथ साथ। क्या बात है जी, आपको वेलकम एंड खुश आमदीद का।

वाह साईं वाह ॾाढो भलो गानो तव्हां एंजॉय कयो पिया असां अलावा प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइटेश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे बाबा वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तरफ़ां तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया जल्दी ॿुधायो जी मूंखे ख़बर पई त केॾा जो मुंहिंजा सोणा लिसनर आहिनि कहिड़ो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइनि पिया सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे ॾिठो वञे केॾा भला भला प्रोडक्ट मिलनि पिया ऐं वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायां पई हुन नंबर ते तव्हां राबितो कयो नंबर अञा ताईं अगरि तव्हां नोट नाहे कयो त नंबर नोट करे वठो काइंडली ओके जी नंबर आहे 03-12-50-2-5-907 ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 हीउ नंबर स्टाइल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइटी जा प्रोडक्ट अवेलेबल करायो ऐं सफ़ा सुहिणा थी वञो पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कयो बाबा

मीर ममताज अली जुदई वालेकुम अस्सलाम अदी सिद्रा मुस्कान भेण खुश आयो अल्लाह पाक तव्हां खे खुश रखे हमेशा मुस्कुराईंदा रहो पर असां खे बि याद कंदा हलो वोट आगा खान जतोई लाड़काणे खां मीर ममताज अली जतोई और एस ममताज ऐं मोहम्मद मुदस्सिर जतोई भाउनि जो मोहबतूं आहिनि बाबा तव्हां खे वेलकम ऐं खुश आमदीद चऊं था अच्छा अली मुर्तजा कहते हैं कि ऐसा लगता है जितना जोर फायदे बताने में लगाती हो उतना जोर दिलाने में लगाती तो आज मैं भी गोरा चिट्टा हो जाता। ये थोड़ी कोशिश आपने भी करनी है ना, एफर्ट्स लगाया करें।

अच्छा मीर तारिक बलोच हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम तवां जो प्रोग्राम बुधू पया मोहब्बतू भांजू वेलकम चोंदा तवां के आदिल के दे सदरा ये मेरा गाना लगाना चलें ठीक है देखते हैं और दर्द दिल लिखते हैं कि लोग चेहरों को याद रखते हैं रब दिलों की नीयतें जानता है बस इसी यकीन ने मुझे हर गम में मुस्कुराना सिखा दिया क्या बात है जी क्या बात है और बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं वेलकम मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं जेकब आबाद से वेलकम करते हैं चाचा खालिद कहते हैं मैंने भी ऊपर सलाम किया है बट ऊपर चला गया होगा हाँ शायद ऐसा होगा फिर अच्छा दीदार अली बिरोही कहते हैं अच्छा एक गजल सुनो चाहेंगे तुम्हें दिलो जान से हम तेरी कसम ये गजल भी खत्म

न्यूज़ तां आहे हा न्यूज़ ताईं तव्हांखे गानो ॿुधणो पवंदो बाबा भले छा बि को गानो न मिटाईंदो पोस्ट के लाइक शेयर कयो जल्दी जल्दी जल्दी ॿुधायो तव्हां पंहिंजी अचण वारी जनरेशन खे कहिड़ो मैसेज ॾींदा बाबा छा चवंदा अचण वारी जनरेशन खे बाबा जल्दी ॿुधायो हुन खां अलावा टॉपिक खे फॉलो कयो ऐं ॿुधायो वाई टेस जो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ऐं नंबर ते राबितो कयो कोन हुननि खे ॿुधायो कोन त तव्हांजे एरिया में मिले थी या कोन ओके जी ग़रीब खे हक़ कोन्हे को इश्क करे जो पहले जाओ कमा के आओ और फिर ही बात करेंगे उन खां अलावा जेको आहे सो हाणे तव्हां न्यूज़ ब्रेक ॿुधो पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे पोइ जल्दी वापसी तव्हांखे मोटी अचूं था तव्हां हिते वेठा हुजो कारे न वञिजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाई टेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगायो जीअं तव्हां बि सोणा थियो

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: माजी में ऑपरेशन दौरान माजी में दहशतगर्दन जंग में थी सो रहा थी वो सिक्योरिटी जरिए मौजूद बलोचिस्तान में ऑपरेशन अलअजम तहत सिक्योरिटी फोर्सेज जो कार्रवाई जारी हैं ऑपरेशन अलअजम तहत जारी ऑपरेशन में नव ताई भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारी चुका है ऑपरेशन दौरान कोलिकन उमरानी खडकुचा ए मस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दन के बड़ो नुकसान पहुंचो है दहशतगर्दन के मुख्तलिफ थाकन के तबाह करे बारूदी मवाद हथियार हथ कया हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दन के खात्मे ताई फोर्सेज जो कार्रवाई जारी रहंदी मुल्क में गैर कानूनी तौर तरसल अफगान की वापसी जो सिलसिलो जारी 1826 अफगान के डेह रवानो कर दस्तावेजन मूजिब गुजर 24 कलाक दौरान POR कार्ड होल्डर 202 अफगान महाजरन के वापस मोकलो वो है 1001 गैर कानूनी तौर तरसल अफगान के वापस डेह मोकलो वो KP के रस्ते 190 अफगान के डिपोर्ट कर 946898 गैर कानूनी तौर तरसल अफगान के वापस मोकलो वो है
2: थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: यार ही गोडन
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 03013992836।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
2: प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएंगे आप अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि आपको लगता है कि ये हमारी आने वाली जनरेशन के नाम जाना चाहिए। जल्दी से बताइए और अपने होने का एहसास दिलाते जाइए 888 और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जाएंगे। ओके जी, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्योंकि पहले हमने यहाँ पर बात करी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। सो अभी बात करने की बारी आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जिन लोगों को नहीं पता डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में अब ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो चुके हैं जो जनाब ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करते हैं। अक्सर तौर पर ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों की स्किन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से उनको कोई भी प्रोडक्ट लगाने में जो है ना वो दुश्वारी पेश आ जाती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लगाएं तो हमारी स्किन ऐसे सेफ भी रहे और हमारी स्किन पर ग्लो भी आता रहे, हमारी स्किन जो ना खूबसूरती भी आती रहे। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में तैयार हो चुका है, एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो चुका है जो कि मेडिकेटेड फार्मूला है और उसके अलावा जो है इसे डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। अच्छा, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ पाकिस्तान में मिलने वाला प्रोडक्ट है बाकी बाहर के ममालिकात में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो है ना वो फरोख्त की जा रही है। बाहर के ममालिक के लोग जो है वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट जब मौजूद है जो कि जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूलों को लोग ज्यादातर तरजीह इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनकी स्किन जब सेंसिटिव हो जाती है तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप ज्यादातर जो है ना मेडिकेटेड फार्मूले अप्लाई किया करें तभी जाकर आपकी स्किन की जो है वो हिफाजत होती रहेगी और आपको वो हुसन मिलता रहेगा जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों को पता ही है जना कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि आप जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई है। एक मैयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और हमेशा तरोताजा रखने में मदद देती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की बेरोनकी को भी कम कर देता है, आपका चेहरा जो है वो साफ हो जाता है, शिफाफ हो जाता है और आपकी खूबसूरती जो है वो वाजे होकर सामने आना स्टार्ट हो जाती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब इतनी अच्छी अच्छी चीज है जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, उसके अलावा अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है और वो इसलिए ऐड की गई है ताकि आप लोगों की खूबसूरती में जनाब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए, आपको मिलती रहे वो खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर, दो दिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा। और डी स्किन फेस वॉश की अगर हम बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ना अगर डी स्किन फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो दोनों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना ये प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई वाह वाह जेका असांखे वाई बचे पई या अमीरन वारी वाई बचे पई, तो बिल्कुल तव्हांखे वाई अमीरन वारी ईंदी छो त तव्हां एतिरा ज़बरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल करे रहिया आहियो। ऐं डी स्किन फेस वॉश जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे तव्हांजी स्किन खे मॉइस्चराइज़ कंदो आहे, तव्हांजी स्किन खे क्लीन कंदो आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट भी रखंदो आहे। एतिरा सारा फ़ाइदा आहिनि जेके डी स्किन फेस वॉश हुजे या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे तव्हांखे मिली वेंदा ऐं तव्हां इस्तेमाल कंदा। बाबा इस्तेमाल कयो छो त इस्तेमाल करण सां ई तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाकई ही प्रोडक्ट जेके आहिनि केतिरा न सुठा ऐं केतिरे सुठे तरीक़े सां तयार कया विया आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाईंदा रहो बाबा ऐं ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणियो। उन खां अलावा अगरि तव्हां बि पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हांखे डायल करणो आहे 0332738439 0332738
4309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03125025907 03125025907. ही नंबर तव्हां लाज़मी डायल कजो. ॿिन्ही नंबर ते तव्हां राबितो करे ॾिसो, हिकिड़ो बंदि हूंदो त ॿियो त खुलियल ई हूंदो. सो नंबर ते राबितो कयो, हुनखे कॉल करे वठो या मैसेज करे वठो. हुननि खे ॾिसो त बाबा असां तव्हांजा प्रोडक्ट अवेलेबल कराइण चाहियूं था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते. उन्हनि खे तव्हां प्रॉपर जेको आहे न पंहिंजी एड्रेस ॿुधायो, हुननि खे ॿुधायो त असां फलाणी जॻह ते तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं ऐं हिन हिन जनरल स्टोर ते तव्हांजा प्रोडक्ट कोन था मिलनि असांखे, त जीअं हू अवेलेबल कराए सघनि. सो अवेलेबल करायो. ऐं जनाब पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो, छो त इहो तव्हां न कंदा त बाक़ी केरु कंदो. सो पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं जी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या जी स्किन फेस वॉश हुजे इस्तेमालु कयो, जे तव्हां बि सुहिणा थियो.

हाँ भाई, शहरन जी वाई भी कुछ अलग आए. जेरा बुधी करे मजो ही दो. ओगेरी दीदार अली बिरोही कहते हैं, हमें अपने उन्हें लूटा, गेरों को हम खुद लूट लेते हैं. सही बात है. अच्छा, मेरी तारिक बलोच हमारे साथ हैं. हेलो.

ओके जी, दर्दे दिल के नहीं टॉपिक चंदा, मैं तो बस नियत साफ रखो कहूंगी, सबर को अपना साथी बना लो, जो तुम्हारा है वो तुम्हें वक्त से पहले भी नहीं मिलेगा और वक्त के बाद भी नहीं। अच्छा, ये मोटिवेशन नहीं पर थोड़ी समझ में घट आई। अच्छा, मैसेज शायद कुछ एने उने थी भाई।

मोहम्मद अली खोसू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जबरदस्त प्रोग्राम है आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर, बड़ा आदमी वो नहीं जो ज्यादा पैसे कमाए, बल्कि वो है जिसके पास बैठकर कोई खुद को छोटा ना समझे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, सच्चाई और ईमानदारी को अपना सहारा बनाए। आने वाला कल आपका है, लेकिन इससे खूबसूरत और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही के शानों पर है। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मजो अच्छी हुई, भलो मैसेज हो। अच्छा, अली मुतज़ा कहते हैं टॉपिक पर, आने वाली जनरेशन के लिए एक ही मैसेज है कि कुछ पल अपने बड़ों के साथ भी बैठा करो, क्योंकि हर चीज गूगल और मोबाइल से नहीं मिलती। क्या पता आने वाली जनरेशन वॾनि सां सफ़ा वेहण बंदि करे छॾनि, असां ई अॼुकल्ह कोन था वेहो त अलाए छा हूंदा। नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब सबके साथ बैठकर अच्छे से बात करूँ, लेकिन फिर होता ये है कि कांड हो जाता है। फिर कांड से बचने के लिए हम जरा पासो करते हैं।

आदिल कहते हैं कि हम तो खुद बच्चे हैं, जवाब नहीं है पता। सिद्रा आप बड़ों से पूछें जवाब, जी वही सब बताते जा रहे हैं। दीदार अली बिरोही आपने शायरी भेजी, बहुत शुक्रिया। पैनल की जानिब जरा नजर घुमाते हैं। जी आप बताएं जरा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या इरादा रखा है, कब इस्तेमाल करेंगे? बधाई हो मुखे मुखे सब खबर उजन गुर्जे।

0: वाह। अच्छा ये कश्मोर से खिलाक भाई है, कहते हाय सदरा प्लीज मिले चाहता सोनो आ भाई शमन हलायूं था बाबा। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं कि वाइटिश ब्यूटी क्रीम अच्छी है, वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और कहते हैं अब्दुल्ला महर और उसके साथ हैं जी अगर साथ कोई भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, शो की तारीफ करें, बहुत शुक्रिया। आशिक अली मलाह हैं, इसी कहते हैं बकर अबरों से आपका शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और फादली डहरी हैं, सऊद डहरी फ्रॉम नवाबशाह, सलामती शो तवाजो नाइस आए, वालेकुम अस्सलाम भाजू मोबतू आए। ये हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान जी, आई एम फादली लाशारी, काफी टाइम के बाद आज आपके शो में शामिल हो रहा हूँ, सॉन्ग सुनाए ये जो मेरा इश्क है पोइट्री के साथ, सलाम ऑल लिसनर्स, ओके भाग कोशिश कयूं था। और उन खां अलावा जेको आज सो तवा ही गानो बुधो ऐं हिते टाइम बि थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं। हाँ जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, पर वापसी जल्दी तव्हां ॾिठूं त तव्हां सफ़ाई ते वेठा हुजो, पंहिंजी जॻह खां हिलजो न मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड द स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हाणे जीअं तव्हां बि सोणा थियो
1: सनहड़ो थी वियो आहे।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03-07-35-92-120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808347।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जनाब व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से।

ओगजी ॾाढो भलो गानो असां ॿुधूं पिया आहियूं. प्रोग्राम बि ॾाढो भलो आहे जेको तव्हां ॿुधूं पिया खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया वाइटी जा प्रोडक्ट हुजनि या वरी डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजनि, तव्हां ॿुधायो त सही कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया, जंहिंसां ख़बर पए त बाबा तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका उहा किथे पहुती आहे. हिन खां अलावा अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो पिया या अञा ताईं इहो तव्हां ॿुढ तर में आयो त हाणे अवेलेबल करायूं या वरी सुभाणे कंदासीं सुभाणे कॉल कंदासीं या हे हो, अगरि तव्हां बि हिन सोच में आहे त बाबा जल्दी कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो. अवेलेबल कराईंदा तॾहिं त आसानी थींदी, उहो ईअं त तव्हांखे वठण में आसानी थींदी, तव्हांजे आस पास जे माण्हुनि खे आसानी थींदी. सो तव्हां पंहिंजे लाइ बि आसानी पैदा कयो, माण्हुनि जे लाइ बि आसानियूं पैदा कयो ऐं ॾिसो माण्हुनि खे त बाबा असल ख़ूबसूरती जेका उहा किथे आहे. जी जी बिल्कुल, ही सिंगर हाणे ठीक ठाक आहे. ऐं कुझु ॾींहं पहिरियां जॾहिं तुफ़ैल संजराणी साहब खे मतिलबु अटैक आयो, शायदि बीमार हुआ, त कंहिं लिसनर हिते मूंखे चयो त मतिलबु हिकिड़ो ग़लति मैसेज कयो ऐं मां इहो ई सोच हुई मुंहिंजी त इहो मैसेज मां आनियर पाण ई न कयो. मां चयमि त पहिरियां ॾिसां त वाकई इहा हक़ीक़त आहे या न, ऐं ॾिठो त वाकई उहो कूड़ हुयो. मां चयो मां वेही चई वई आहियां हिते प्रोग्राम में त ॾिसो केॾो हिकिड़ो कलेश थी वञे. सो इहो माण्हू थोरियूं ग़लति जेके न ॻाल्हियूं पहुचाईंदा आहिनि, सो उन्हनि खां बचो, पहिरियां तस्दीक कयो पहिले, हा पोइ थोरो अॻिते वधंदा कयो. उन खां अलावा जेको आहे सो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में त ॼाणो पिया, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो पिया ऐं डायल कयो पिया 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-43-09.

छोकी जी तो सिवा पल न सरे, इहे माण्हू बि ज़िंदगी में ॾाढा जेके न मतिलब ॾुख ॾेई वेंदा आहिनि, छो त जंहिं माण्हूअ खां सवाइ असांजी ज़िंदगी में सरंदी न आहे न, बसि पोइ मां सोचां पई त ॿियो गानो हूंदो, सो हिनखे थोरो ओ हीअं हिते था कयूं।

ओगरी रमजान भाई भी असा गड आए रमजान भाई आज मोहब्बतू एन प्रोग्राम बुधो पया और अनवर भाई के गानो वणी वयो आए वाह छा गाल कजे ए मनसारी कहते हैं कि सोनो थेण सा अमीरन वारी फीलिंग अचे थी गारंटी दो लिखत में अचो ते लिखी जावे या हकीकत त वला जॾहिं तव्हां अमीर थी वेंदा न मतिलबु जॾहिं तव्हां सोणा थी वेंदा पोइ तव्हांखे अमीरनि वारी फीलिंग ईंदी अमीर त तव्हां वैसे महिनत कंदा त पोइ थी वेंदा पर तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अमीरनि वारी फीलिंग ईंदी छो त तव्हां एॾा सोणा थी वेंदा ऐं तव्हां वटि अहिड़ो प्रोडक्ट हूंदो जेको तव्हांखे अहसासु ॾियारींदो त बाबा ही जेको प्रोडक्ट आहे न हीउ सिर्फ़ु अमीर हणी सघनि था पर न हाणे तव्हां सभु हणी सघो था छो त टी स्किन ब्यूटी क्रीम एॾे सुठे तरीक़े सां तयारु कई वई आहे हिन में सभु उहे चीज़ूं एड कयूं आहिनि जेके तव्हांजी स्किन जेको आहे न अगरि जंहिंजी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हूंदी आहे या फिर जेके माण्हू सोचींदा आहिनि त बाबा काश असां बि भला भला प्रोडक्ट खणूं त हीउ तव्हां टी स्किन ब्यूटी क्रीम ट्राए करे ॾिसो तव्हांखे सफ़ा मज़ो अची वेंदो।

अॼु भक्तली सियाल भाउ तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो. मोहबतूं आहिनि तव्हांजो बाबा प्रोग्राम ॿुधो पियो. अच्छा मोहम्मद जमान भाई, ये दिन टॉपिक आने वाली जनरेशन को मैसेज है कि मेरी तरह वाइट एश एंड डी स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करके खुद को साईं चवंदा पाण खे चोरी जो चंड्र बणायो. आज की लड़कियां रश करेंगी आपके ऊपर. अच्छा छो लड़कियां भी तो हणंदियूं न, लड़कियां छो न हणंदियूं. लड़कियां भी हणनि, लड़का भी हणनि, सभु हणो बाबा. वाइट एज जा प्रोडक्ट ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट सही आहे. जे कोई बि कंहिं ते रश न करे, सभु सुहिणा हुजनि. निदड़ी कहती है कि मैं और शीजा सीधी बात करती हैं, बट लोगों को लगता है हम उनकी हकीकत आवे. अब लोगों को क्या लग रहा है ये तो हम नहीं सोचते ना.

हाँ भाई, डिप्रेशन डिप्रेशन। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदीद वेलकम करते हैं प्यारे भाई को। वैसे ही बताएं, आजकल आपकी फेवरेट मीम कौन सी चल रही है? सुमाटू गोपांग, आपका गाना जो था वो बताएं जरा, कौन सा गाना था? अभी नहीं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में लगा देंगे। और लखमीर अबड़ो हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम मदद कहते हैं कराची कायदाबाद से हमारे साथ ही। हाय सदरा, कड़ा हाल है नवाजा? दुआ आहे तो हमेशा जियां खुश हूंदा। अज टाइम मिलियो आहे प्रोग्राम में शामिल थियण जो। संडे आहे न, 2 बजे छुट्टी थी, सोचो अज सदरा जे प्रोग्राम में शामिल थियां। शमन जो गानो ॿुधराए जो, शमन जो गानो हले पियो बाबा। ऐं तव्हांखे चऊं था भली करी आया, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। ऐं तव्हां चयो आहे डेडिकेट मामा नदीम अबड़ो खे। ओके जी, अच्छा अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, खुश है? और मामा समान की थी साइलेंट मैसेज पढ़िएगा बुआ जी। ना बाबा, यो साइलेंट पढ़ने जड़ो कोने को। अगर तुम एतरो ही चाहियो था तो डी स्किन जा प्रोडक्ट हुजन या वाइट एज जा प्रोडक्ट हुजन तो तुम दुकान खोले वेठो, समझो था जो फायदो थी वेंदव। अल्लाह, अच्छा हाले सुल्तान हमारे साथ ही। हाले सुल्तान वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? दीदार अली बिरोही, पुराने लिसनर कहाँ गए? हाँ भाई, पता नहीं किसी की शादी हो गई, किसी की जॉब लग गई, किसी को क्या हो गया, किसी को क्या हो गया। अब सारे लोग हमेशा तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं रहते ना, इसीलिए कुछ जाते हैं तो कुछ आ जाते हैं। हाले सुल्तान हमारे साथ कहते हैं आई एम लिसनिंग योर शो, थैंक यू वेरी मच जी, खुश आमदीद। बक्तली सियाल भाई, थैंक यू। न बाबा, तव्हां जेको नंबर ॿुधायां पई न, नंबर ते राबितो ज़रूरु करे वठिजो। अगरि तव्हां कॉल नथा करे सघो, कॉल तव्हांखे करणु ॾाढी मुश्किल लॻे थी, त तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज छॾे ॾियो ऐं हुन मैसेज में लिखो बाबा फलाणी जॻहि ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम या वर वाइट एज जा प्रोडक्ट कोन था मिलनि, त जीअं हू अवेलेबल कराए सघनि। हू तव्हांखे रिस्पॉन्स ॾींदा, चाहे तव्हां कॉल कयो या वरी तव्हां मैसेज कयो।

सुदीस किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाइण चाहियो था त बाबा दिलि खोले लॻायो ऐं पंहिंजे पिणी प्यारनि खे गिफ्ट करणु चाहियो था त उहो बि ज़रूरु कजो छो त तव्हां सां गॾु गॾु तव्हांजा जेके प्यारा आहिनि उहे बि सुहिणा हुजनि न कोई ॻाल्हि मज़ो ॾींदी आहे।

हेलो चाचा खालिद कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मुखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम भल्लो बनाए छड़ो आप भल्लो बनाए छड़ो आ सही रमजान भाई कहते हैं थैंक यू जी थैंक यू बहुत शुक्रिया।

ओके जी फहद बलोच भा तमाम भी से गुड मौजूद है मोहब्बत हूं तमाम जो अच्छा त चओ लड़कियां भी हणन लड़का भी हणन नाइस लाइन हा न सबनी चलाया बाबा सबनी के कचड़ो साव आए वरी मां सोचिंदी आ त बेचारा छोकरा जके दुख कना हुंदा त हाणे असां के छो न था बाबा चओ त हाणे असां भी हणो डी स्किन प्यूरी क्रीम या वाइटी जा प्रोडक्ट हाणे मर्द भी लगाइन मायूं भी लगाइन लकड़ा लकड़ियूं सब लगाइन समझो था।

जी जी दर्द दिल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। और निधरी कहती है कि शीजा और मैं शो में होते हैं, मूड और शो अच्छा। सही बात है, वैसे यहाँ पर मोटू कौन और पतलू कौन हुआ? अच्छा, उसके अलावा अखलाक भाई सिर्फ हंसते हैं। जो भी देखो अखलाक भाई का कमेंट उसमें लिखा होता है हा हा हा हा हा। कुछ और भी लिखे। जाकिर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया जाकिर भाई। मेहरापुर से हाफिज नईम है, वालेकुम अस्सलाम बाजी। वैसे तो आपका प्रोग्राम पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन शामिल आज हो रहा हूँ। मेहरापुर से हाफिज नईम, वालेकुम अस्सलाम जी, आपको पहले तो कहते हैं और बहुत शुक्रिया। वैसे तो कब से आप हमारा शो सुन रहे हैं, आप जानते होंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और वाइट एज के प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके मेहरापुर में मिल रहे हैं नहीं। नेक्स्ट टाइम मैसेज करें तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? और आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है।

हाथ धाई लगते हैं कि उसने कहा बहुत देखे हैं तेरे जैसे. हमने कहा ब्रांड हो कॉपी तो होगी. हाउ सही सही आयो था पानी जगह थे. ओके सो हेट खोड़ से तुम जाने कॉमेंट आए. सो साइमन जो टाइम थी वयो है टेम थी आ बाबा टेम थी आ सजाद अली भा तमा जो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया तमा के वरी जॉइन कयो था असा 5 बजे वाली प्रोग्राम में. गुलाम हैदर फुल पोटो भा तां जो भी मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया 5 बजे जॉइन कजो. उन खां अलावा पंज ओ हिनो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुजे त माज़रत कयो था. जिना फीडबैक रहजी वया आइन गाने रहजी वया आइन सबने के सबनी का माजरत करी और सबनी का मोकला नहीं ना बल्कि 5 बजे मिलन जी उम्मीद रखूं था 5 बजे मिलो तो तवांजा गाना हलायूं था. ठीक है पांजो लाइस रो ख्याल रखो इंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या वरी वाइट एशिया प्रोडक्ट हुजन ये सब तवां इस्तेमाल करो. जेको जेको प्रोडक्ट तवां के लगे त ही प्रोडक्ट असां जे हिसाब वारो आहे असां जे स्किन जे मुताबिक आहे सो उन खे तवां परचेस कयो पो इस्तेमाल कयो पने खूबसूरती जो ख्याल रखो. सो मोकलाणी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू.

It's 3 p.m.

शिदत ते बदल कारवायूं जारी रखियूं त सदर ट्रंप वटि सभु ऑप्शन मौजूदु आहिनि इराक लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे। अमेरिका पारां हमला बंदि करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कारवायूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातिनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकिजी पियो आहे, अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे, 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखिड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसीज़ खां मुतासिर थी फ़ैसिला न करणु घुरिजे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस ऐं फ़ौजी सरबराह जनरल जेन केन ईरान ख़िलाफ़ कारवाइयुनि में शिदत आणण ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। अमेरिकी ख़बर इदारे CNN मूजिब सदर ट्रंप वटि थियल आला सतह इजलास में नायब सदर जे डी वेंस ऐं जनरल जेन केन ख़दशनि बाबति आगाह कयो हो। जनरल जेन केन हथियारनि जे ज़खीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि मनफ़ी असरनि बाबति ख़दशा ज़ाहिर कया आहिनि। नायब सदर जे डी वेंस बि जंग में शिदत आणण वारे इम्कान ते ख़दशा ॾेखारिया हुआ। बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ ऑपरेशन अल अज़म जारी, वधीक 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 16 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिबि बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कारवायूं जारी आहिनि। ऑपरेशन अल अज़म तहत जारी ऑपरेशन में हिन ताईं भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारिजी। ऑपरेशन दौरान कुलिक, डुमराणी, खडकूचा ऐं मस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ थाकनि खे तबाह करे बारूदी मवाद हथियार हथु कया विया आहिनि। बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कारवायूं जारी रहंदियूं। सिंध जो विरहाङो कॾहिं बि न थींदो, कुझु माण्हुनि जे शोषण ते ध्यान न आहियूं ॾींदा। MKM सदाई हुकूमत में रही आहे, कराचीअ में कम रुगो पीपल्स पार्टी ई करायो आहे। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई नासिर शाह चयो आहे त कराचीअ में रस्तनि ऐं ड्रेनेज जो कम हली रहियो आहे, पैसा बि रखियल आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत कराचीअ जे लाइ कुझु बि नाहे रखियो। मुतदाबाद चयो त शहर में बरसाती नालनि जी सफ़ाई वारो कम जारी आहे, रस्तनि जी सूरतहाल बि बहितर थी आहे। मुल्क में गैर

0: ओपीडी मुख्तलिफ़ पार्ट्स एमआरआई सीटी स्कैन रूम्स ऐं ऑपरेशन थिएटर्स जो मुआइनो कयो। मोहसिन नकवी चयो त एफ सी अस्पताल खे फंक्शनल आहे। तुर्बत में इलाज जी जदीद सहूलियतुनि सां लैस अस्पताल जी सख़्त ज़रूरत हुई। तुर्बत जी मक़ामी आबादीअ खे बि इलाज जूं बहितरीन सहूलियतूं मिलंदियूं। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नकवी खे अस्पताल में फराहम कयल तिबी सहूलियतुनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। सदर आसिफ अली ज़रदारी 71 सालनि जो थी वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां सदर आसिफ अली ज़रदारी जी सालगिरह जा केक कटिया विया। अॻवाननि ऐं कारकुननि पारां वाधायूं। सिंधु दरिया ते धाड़े ऐं जलालपुर केनाल ख़िलाफ़ सिंधु यूनाइटेड पार्टी जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। सखर, कैरफुर, कंधकोट, जेकबाबाद, शहदादकोट ऐं सेवन में एहतजाज। सन दौड़, वारह, जाती, कोटड़ी, गब्बट, ढोरो नारो, ॾहरकी ऐं बख्शापुर में मुज़ाहिरा। सकरन, जोही, ठुल, मंदूराबाद, केनशाह ऐं काज़ी अहमद में बि कारकुननि एहतजाजी मुज़ाहिरा कया। अॻवाननि जो चवणु आहे त पंजाब जलालपुर केनाल ज़रिए सिंधुअ मां पाणी चोरी करे रहियो आहे। जलालपुर केनाल समेत सिंधु दरिया ते को बि गैरकानूनी केनाल क़बूल न आहे। सिंधु दरिया ते ॾियल समूरा गैरकानूनी केनाल रद्द करे सिंधु खे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे। बख्शापुर वेझो कार इल्ज़ाम हेठि बिटो क़तल। ॻोठु मुनीर ख़ान जखाणी में हसीना ऐं अलीबाग जखाणी खे क़तल कयो वियो। नौजवान जो लाश हथ, नारीअ जो लाश न मिलियो। पुलिस चयो आहे त नौजवान जो लाश मिलियो आहे। नारीअ जे लाश जी ॻोल्हा जारी आहे। जवाबदार घर छॾे फरार थी वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे। जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: पूरी हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

ईरान ते हमलनि में शिदत वारे मामले ते अमेरिकी क़यादत इख़्तिलाफ़नि जो शिकार नायब सदर जे डी वेन्स ऐं फ़ौजी सरबराह जेन किन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशनि खां सदर ट्रंप खे आगाह करे छॾियो। CNN मूजिबि जनरल जेन किन आला सतह इजलास में सदर ट्रंप खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कारवायुनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो। हथियारनि जे ज़ख़ीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजेस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर जे डी वेन्स बि ख़िते में इतिहादनि जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी। अमेरिकी फ़ौज जा सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हुकमनि बाद ईरान ते हमला रोके छॾिया। अमेरिकी मीडिया मूजिबि सदर ट्रंप पेट्रियाट दिफ़ाई मिज़ाइल जे ज़ख़ीरनि में घटिताई ऐं अरब इतिहादनि जे ख़दशनि बाद ईरान ख़िलाफ़ वधीक कार्रवायूं न करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। व्हाइट हाउस मूजिबि सदर ट्रंप सदाई तकरार जे सफ़ारती हल खे तरजीह ॾिनी आहे। जेकॾहिं ईरान आबन हरमूज़ ऐं इतिहादनि ख़िलाफ़ शिदत ते ॿधल कार्रवायूं जारी रखियूं त सदर ट्रंप वटि सभु ऑप्शन मौजूदु आहिनि। ईरान जे लाइ बहितर आहे त ॻाल्हियुनि वारो रस्तो इख़्तियार करे।

अमेरिका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कार्रवाई रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकी पियो आहे, अमेरिका वटि का बि वाज़े हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे, 200 खां वधीक अमेरिकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखिड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसीज़ खां मुतासिर थी फ़ैसिला न करणु घुर्जनि।

बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने खिलाफ ऑपरेशन अल अज़म जारी, वधीक टे दहशतगर्द माजी विया। ऑपरेशन दौरान माजी वाले दहशतगर्दनि जंग वधी 16 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बलोचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कारवायूं जारी। ताईं भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारी चुका आहिनि। ऑपरेशन दौरान कुलेख नबराणी खडकुचा ऐं मक़ामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ थाकनि खे तबाह करे बारूदी मवाद हथियार हथ कया विया आहिनि। बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कारवायूं जारी रहंदियूं।

सिंध जो विरहांगो कॾहिं बि न थींदो, कुझु माण्हुनि जे शोषण ते ध्यानु नाहियूं ॾींदा। एम क्यू एम सदाई हुकूमत में रही आहे, कराचीअ में कम रुगो पीपल्स पार्टी करायो आहे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबेदारु नासिर शाह चयो आहे त कराचीअ में रस्तनि ऐं ड्रेनेज जो कमु हली रहियो आहे, पैसा बि रखियल आहिनि। वफ़ाक़ी हुकूमत कराचीअ जे लाइ कुझु बि नाहे रखियो। मुतदाब चयो त शहर में बरसाती नालनि जी सफ़ाई वारो कमु जारी आहे, रस्तनि जी सूरतहाल बि बहितर।

सिंध में साल 2026 जे पहिरें छहनि महीननि दौरान ॿारनि में HIV जा 729 नवां केसिस आहिनि। जनवरी खां जून ताईं मुल्क में HIV जा 805 केसिस रजिस्टर थिया, अक्सरियत सिंध जी शामिल। सिहत खाते मूजिबि जनवरी में 125, फेबरवरी में 117, मार्च में 87, अप्रैल में 121, मई में 108 ऐं जून में 171 ॿारनि में HIV ज़ाहिर थी।

0: सिंधु दरिया ते धाणी ऐं जलालपुर किनाल ख़िलाफ़ सिंधु यूनाइटेड पार्टी जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। सखर, खैरपुर, कंधरकोट, जेकबाबाद, शहदादकोट ऐं सेवण में एहतजाज। सन, दौड़, वारह, जाती, कोठड़ी, गंबर, ढोरो नारो, ॾहरकी ऐं बख्शापुर में मुज़ाहिरा। सकरन, जोही, थुल, मंदूराबाद, केनशाह ऐं काज़ी अहमद में कारकुननि एहतजाजी मुज़ाहिरा कया। अॻवाननि जो चवणु आहे त को बि गैरक़ानूनी केनाल क़बूल नाहे। सिंधु दरिया ते अॾियल समूरा गैरक़ानूनी केनाल रद्द करे सिंधु खेसे जो पाणी ॾिनो वञे। बख्शापुर वेझो कारा इल्ज़ाम हेठि बिटो कतल नौजवान जो लाश थिए। नारी जो लाश न मिलियो। ॻोठ मुनीर ख़ान ॾखाणी में हसीना ऐं अलीबाग ॾखाणी खे क़तलु कयो वियो। नौजवान जो लाश थिए, नारी जो लाश न मिलियो। पुलिस चयो आहे त नौजवान जो लाश मिलियो आहे। नारी जे लाश जी ॻोल्हा जारी आहे। जवाबदार बि घर छॾे फरार थी वियो आहे। सिजावल वेझो जवाबदार संग न मिलण सां नारीअ खे क़तलु करण बाद पाण बि आपघात करे छॾियो। ॻोठ मतो सूमरो में नौजवान न्यास सूमरो शादीअ खां इनकार करण ते नारी अजब ख़ातून खे घुटा ॾेई क़तलु करण बाद पाण बि वण में फाहु खाई आपघात कयो। पुलिस चयो आहे त वधीक जांच करे रहिया आहियूं। कंधरकोट में खीर जे दुकान ते कमु कंदड़ निंगर दुकान मालिक हथां गोलियूं हणी क़तलु। वारसनि जो लाश रखी धरणो। गुलशेर महले में दुकान मालिक फायरिंग करे 15 वरनि जे फरहान मलिक खे क़तलु कयो। पुलिस जो दुकान मालिक जे घर ते छापो। जवाबदार घर ख़ाली करे फरार। मक़तूल निंगर जे वारसनि जो लाश इंडस हाईवे ते रखी धरणो। टिन सूबनि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। मक़तूल निंगर जे वारसनि जो चवणु आहे त निंगर खे बेगुनाह क़तलु कयो वियो आहे। जवाबदार गिरफ़्तार थियण ताईं धरणो ख़तमु न कंदासीं। न्यू सैदाबाद भरिसां पाणीअ जे तलाउ मां अणॼातल शख़्स जो लाश थिए। ॻोठ बागो ख़ान जमाली जे वेझो पाणी जे तलाउ मां हिकु शख़्स जो लाश मिलियो। सुञाणप न थी सघी। कराची में सुपर हाईवे ते ट्रक जो मोटरसाइकिल खे टकर। 3 ॼणा फौत। हादसे जो ज़िमेवार ट्रक ड्राइवर गिरफ़्तार। ऐं मौसमियात खाते सिंध में अॼु ऐं सुभाणे बरसाति पवण जी अॻकथी करे छॾी। मौसमियात खाते मूजिबि सिंध में मॉनसून जो ताक़तवर सिलसिलो दाख़िल थियण वारो आहे। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, टंड मोहम्मद ख़ान, टंड अलहयार ऐं हैदराबाद में तेज़ हवाउनि सां बरसाति जो इम्कान आहे। सांगर, नवाबशाह, नौशहरो फिरोज, खैरपुर, सखर, शिकारपुर, कश्मोर ऐं जेकबाबाद में तेज़ वसकारो थी सघे थो। कराची शहर में बि 3 ॾींहनि दौरान हल्की बरसाति जो इम्कान ज़ाहिर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते

0: जी होंडा मोटरसाइकिल जी कराए ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कार कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
4: 03013992836।
5: It's 4:15 PM.
6: This time check is brought to you by
0: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
7: Mehrapur ke ho to aawaz bhi Mehrapur ki hai. Sunte raho GFM 94.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज के वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज के वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आवाज होण जो सबूत है जत्थन कानून हथ में खणंदड़ के सोशल मीडिया जरिए हथे डिनी वही। पाकिस्तान पाकिस्तानी एजेंसी बाबत गुमराह कदड़ प्रोपेगेंडा कई वही। कश्मीर में दफेड़ पखेड़ जो नाकाम कोशिशों कई हुई। ईरान के हमलन में शिदत वाले मामले ते अमरीकी क्यादत इख्तलाफन जो शिकार। नायब सदर जे डी वेंस फौजी सरबार डेन केन ईरान खिलाफ जंग में शिदत ते खदशन का सदर ट्रंप के आगाह करे छो। सी एन एन मूजिब जनरल डेन केन आला सतह इजलास में सदर ट्रंप के ईरान खिलाफ इम्कानी फौजी कार्रवाई बाबत नतीजन खतरन का आगाह किया। हथियारों के जखीरन में घटताई और चैलेंजेस बाबत भी खदशा रखा। नायब सदर जे डी वेंस भी खिते में इतिहादियों के खदशन बाबत सदर के आगाही दिनी। अमरीकी फौज सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मन बाद ईरान से हमला रोके छा। अमरीकी मीडिया मूजिब सदर ट्रंप पेट्रियाट दिफाई मिसाइल के जखीरन में घटताई। जेकर ईरान अपना हुर्मुस इतिहादियों खिलाफ शिदत से बदल कार्रवाई जारी रहूं तो सदर ट्रंप वट सब ऑप्शन मौजूद हैं। ईरान लाए बेहतर है तो गालियों वालों रस्तों अख्तियार करें।

अमेरिका पारां हमला बंद करण बाद ईरान बि अमेरिका ख़िलाफ़ कारवायूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका ॿिनि रातियुनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमेरिका थकिजी पियो आहे। अमेरिका वटि का बि वाज़ह हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमेरिका जो घणो नुक़सान थियो आहे। 200 खां वधीक अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमेरिका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पखिड़िजी वेंदी। अमेरिका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसला न करणु घुर्जनि। आपटे अरबुज में माहौलियाती ख़िदमतनि ऐं नुक़साननि जी फीस ज़ाब्ता तय करे छॾिया। ईरान जे माहौलियाती वारे इदारे चयो आहे त 50,000 खां वधीक बहरी जहाज ऐं तेल बरतार बेड़ा आपटा हुरमुस मां गुज़रनि था, जंहिं सबब समुंड में माहौलियाती गदलाण पैदा थिए थी। गदलाण सबब थींदड़ नुक़सान जो अज़ारो थियणु घुर्जे। तयार कयल ज़ाब्ता आलमी कन्वेंशन जी शिक मूजिब आहिनि। आपटा हुरमुस मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां वज़न ऐं सफ़र मूजिब फीस उगाड़ी वेंदी। अवाम खे मिलंदड़ हर बस, हर इस्पताल, हर रोड ऐं हर एयरपोर्ट जी आज़ियां कयां थो, पर अवाम जे टैक्स मां वरितल शयूं अवाम लाइ तोहफ़ो नाहिनि हूंदियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कुझु माण्हू आज़ाद कश्मीर में अवाम खे तोहफ़ा ॾियण जा दावा करे रहिया आहिनि। जेके ॻाल्हियूं कयूं पयूं वञनि उहे अवाम लाइ तोहफ़ो नाहिनि, अवाम जो हक़ आहिनि। सिंध में बि अवाम खे मुफ़्त इलाज जूं सहूलियतूं मिलियल आहिनि, जेके तोहफ़ो नाहिनि। आज़ाद कश्मीर जो अवाम पंहिंजे हक़ लाइ वोट ॾिए। बलूचिस्तान में हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ ऑपरेशन अल अज़म जारी। वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 16 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल अज़म तहत सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवायूं जारी आहिनि। ऑपरेशन अल अज़म तहत जारी ऑपरेशन में हिन वक़्त ताईं भारतीय फितने जा 16 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि। ऑपरेशन दौरान पुली कुंड, इमराणी, कड कोचा ऐं मस्तोंग में भारतीय हामी दहशतगर्दनि खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। दहशतगर्दनि जे मुख़्तलिफ़ थाकनि खे तबाह करे बारूदी मवाद ऐं हथियार हथु कया विया आहिनि। बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं फोर्सिस जूं कार्रवायूं जारी रहंदियूं।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी

0: 93.3
1: उम्मीद के दिए जलते हैं।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002724، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया
3: मामले ते अमरीकी क़यादत इख़्तिलाफ़नि जो शिकार नायब सदर जेडी वेंस ऐं फ़ौजी सरबराह डेन केन ईरान ख़िलाफ़ जंग में शिदत ते ख़दशन खां सदर ट्रंप खे आगाह करे छॾियो। CNN मूजिब जनरल डेन केन आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे ईरान ख़िलाफ़ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति नतीजनि ऐं ख़तरनि खां आगाह कयो। हथियारनि जे ज़ख़ीरनि में घटिताई ऐं ॿियनि चैलेंजेस बाबति बि ख़दशा रखिया। नायब सदर जेडी वेंस बि ख़िते में तादियुनि जे ख़दशनि बाबति सदर खे आगाही ॾिनी। अमरीकी फ़ौजी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे हुकमनि बाद ईरान ते हमला रोके छॾिया। अमरीकी मीडिया मूजिबि सदर ट्रंप

अमरीका पारां हमला बंदि करण बाद ईरान बि अमरीका ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं रोके छॾियूं। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमरीका ॿिनि रातियुनि खां हमला नाहिनि कया, जंहिं बाद ईरान बि जवाबी हमला रोके छॾिया आहिनि। अमरीकी टकिजी पियो आहे, अमरीका वटि का बि वाज़ हिकमत अमली नाहे। दिफ़ाई हमलनि में अमरीका जो घणो नुक़सान थियो आहे, 200 खां वधीक अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया आहिनि। अमरीका ॿीहर हमला शुरू कया त जंग वधीक पकड़जी वेंदी। अमरीका खे इसराइली पॉलिसियुनि खां मुतासिर थी फ़ैसला न करणु घुरिजनि। आबना हरमुस में माहौलियाती ख़िदमतनि ऐं नुक़साननि जी फीस वसूल करण जा ज़ाब्ता तय करे छॾिया। ईरान जे माहौलियात वारे इदारे चयो आहे त 50,000 खां वधीक बहरी जहाज़ ऐं तेल बरदार ॿेड़ा आबना हरमुस मां घुसनि था, जंहिं सबब समुंड में माहौलियाती गिदनाण पैदा थिए थी। गिदनाण सबब थींदड़ नुक़साननि जो अज़ालो थियणु घुरिजे। तयारु कयल ज़ाब्ता आलमी कन्वेंशन जे शिक मूजिबि आहिनि। आबना हरमुस मां घुसंदड़ जहाज़नि खां वज़न ऐं सफ़र मूजिबि फीस उगाड़ी वेंदी।

0: आज़ाद कश्मीर में थींदड़ एहतजाजनि पुठियां भारत जो हथु निकितो। शरपसंदनि खे भारतीय फंडिंग जा सबूत साम्हूं अची विया। फोर्सिस हथां गिरफ़्तार हिकु शरपसंद जो वास्तो बि भारत सां निकितो। सूद समाह वारे फाकी वज़ीर ताला ताड़ चयो आहे त भारत ॼाण पखीड़ंदड़ सबूरे नेटवर्क भारत सां आहे। साज़िशी अंसरनि कश्मीर जो पाकिस्तान सां रिश्तो कमज़ोर करण जी नाकाम कोशिश कई। पाबंदी मड़ियल जमात जो चूंडनि में हिसो न वठणु भारत नवाज़ हुअण जो सबूत आहे। जथनि ऐं कानून हथ में खणंदड़नि खे सोशल मीडिया ज़रिए हथी ॾिनी वई। पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी एजेंसी बाबति गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई वई। कश्मीर में डफेड़ पखेड़ण जूं नाकाम कोशिशूं कयूं वयूं। बलोचिस्तान में हिंदुस्तानी फ़ौज ख़िलाफ़ ऑपरेशन अलज़म जारी। वधीक टे दहशतगर्द मार थी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना करियर बनाएं। Then I realized I was made for music.
2: जब तक मैं जिंदा हूं तो वो सब कुछ करोगे और सुनोगे जो मैं चाहूं।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा सिंध सरकार पारां 5 लख टन परदेही कणक खरीद करण जो फैसलो। पाणी समेत चईन मामलनि ते टास्क फोर्स कायम। थर में वसकारो मुख़्तलिफ़ वाक़िअनि में 3 ॼणा फोत। कारूंजर मां नयूं वही आहियूं, मरीअ जहिड़ो मंज़र। सिंध हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियारण जे लाइ कानून साज़ीअ जो फ़ैसिलो। सिंध में डीओस खां पोइ 500 TOs जूं पोस्टूं ख़तम। 1,41,000 अमलो स्कूलनि हवाले। सिंध में आवाम खे न रिलीफ मिली रहियो आहे न इंसाफ़। सैयद सदर दिनशाह राशदी। स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा अटे जो बहरान ऐं इंतज़ामी नाअहली। सिंध काबीना पारां सरकारी मुलाज़मनि जे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जे मुदे में वधीक 6 महीननि जी वाधि। सिंध जे पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI बाबति 4 टास्क फोर्स क़ाइमु करणु ऐं 5 लख टन परॾेही कणिक ख़रीदारीअ जो फ़ैसिलो। कुनरी मिर्च मंडीअ लाइ 22 एकड़ ज़मीन मुख़्तस करणु। FWO ज़रिए मलीर जे इलाइक़े डिमलोटी खां DHA ताईं वाटर लाइन मनसूबो मुकमल करणु। मनसूबे जी लागत में वाध ऐं 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु करण जी मंज़ूरी। उन ॾिस में सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि सिंध काबीना जो अहम इजलास थियो, जंहिं में 22 एजेंडाउनि ते ग़ौर करण बाद मंज़ूरी ॾिनी वई। इजलास में काबीना सूबे में कणिक ज़ख़ीरनि जी सूरत हाल, अटे जी क़ीमतुनि ऐं खुराक खाते जी कणिक ख़रीदारीअ वारी तजवीज़ जो जाइज़ो वरितो। काबीना खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जेका गुज़िरियल सालनि जे बचियल ज़ख़ीरनि समेत 4.84 मिलियन टन थिए थी, जॾहिं त सिंध जी सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जेका 1.69 मिलियन टन जी घटाई खे ज़ाहिर करे थी। मौजूदा वाइपे जो सिलसिलो जारी रहियो त 2027 ताईं सूबे खे लगभॻि 2.11 मिलियन टन कणिक जे खोट जो मुंहुं ॾिसणो पइजी सघे थो। हिन खुराक खाते खे हिदायत कई त ज़ख़ीरा कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करे कणिक जे लिकायल ज़ख़ीरा हथु कया वञनि। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ऐं लाॻापियल खातनि जे वज़ीरनि ते मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी ठाहिण जो फ़ैसिलो कयो वियो, जेका हर हिकु टास्क फोर्स जी जोड़जक खे हतमी शिकिल ॾींदी। काबीना मीरपुर ख़ासि जे वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन क़ाइमु करण जी बि मंज़ूरी ॾिनी। होॾां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण काबीना जे फ़ैसिलनि बाबति प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सरकारी मुलाज़मनि जे सिहत इंश्योरेंस प्रोग्राम में बि वधीक 6 महीननि जी वाधि कई वई आहे, जॾहिं त पाणी मामलनि, मौसमियाती तब्दीली ऐं मसनूई ज़हानत AI सां लाॻापियल मामलनि ते ख़ुसूसी टास्क फोर्स जोड़ियो वेंदो। हुन वधीक चयो त कराची में 400 एकड़नि ते जदीद ट्रक स्टैंड क़ाइमु कबो। थर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वसकारे जो काल बि वक़फ़े सां जारी रहियो। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाकियनि में 3 ॼणा फोत। नंगर पार्कर ऐं भर पासे में गजगोट सां तेज़ बरसाति जो 24 कलाक जारी रहियो। कारूंजर जबल मां नयूं वही आहियूं, बरसाति बाद कारूंजर जबल मां गोड़ धोड़ो ऐं राणा सर घरटियारी ऐं पोरण वाह ऐं ॿियूं नयूं वही आहियूं। मौसम खुशगवार थी वई, जॾहिं त नगर पार्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 2 ॾींहनि खां वक़फ़े सां किथे हल्की त किथे तेज़ बरसाति जारी रही। ॿिए तरफ़ ॻोठु वाधड़ाईअ भरिसां बरसाती नदीअ जे वहिकिरे मां 45 वरनि जी लक्ष्मण कुलीअ जो लाश हथायो। वारसनि मूजिबि लक्ष्मण गुज़िरियल राति घरां बरसाती नदीअ जे वहिकिरो ॾिसण जे लाइ निकितो हुयो। सुबुह जो संदसि लाश नदीअ मां मिलियो। बरसाति खां पोइ थर जे मारू माण्हुनि जूं रौनकूं मोटी आयूं ऐं फितरी मंज़र ॾिसण जे लाइ सियाह पहुची विया, जॾहिं त नगर पार्कर खां चोड़ियो रोड टुटण सबबि सियाह वॾे अंग में फाथल आहिनि। कुनरीअ भरिसां ॻोठु वली मोहम्मद आरए में बरसाति दौरान खिवण किरी पई। खिवण किरण सबबि घर जे अंगण में रांदि कंदड़ 4 सालनि जो ॿारु विनोद पुटु चमन कुली फोती वियो, जॾहिं त वाकिए में 7 वरनि जो दिलीप पुटु चमन कुली ज़ख़्मी थी पियो। फोतीअ जो मड़ ऐं ज़ख़्मी खे तालके अस्पताल नियो वियो। डॉक्टरनि पारां हिकु ॿार जे फोत थियण जी तसदीक कई वई। वाकिए बाद फोती ॿार जे घर में घुराम मची वियो। ढोरोनारो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसाति जो पहिरियों वसकारो शाम खां पोइ राति जे वक़्त ताईं जारी रहियो, जंहिं सबबि मौसम ज़बरदस्त थी वई। तालीम खाते पारां इंतिज़ामी सुधारनि जे लाइ क्लस्टर पॉलिसी ते अमल दरामद ऐं गैर ज़रूरी इंतिज़ामी उहिदा ख़तमु करण जी मंज़ूरी। TEOs जूं 550 पोस्टूं पोल में मुंतकिल करणु ऐं
टीओज ऑफिस में मौजूद 1,41,000 तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले के स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत क्लस्टर हब स्कूलन में मुंतकिल करण जो फैसलो कयो वियो आहे। ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते नए सिरे इंतज़ामी जोड़ जक वारी तजवीज़ बि मंज़ूर कई वई। काल तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में माली साल 2025-2026 में सूबे जे 34,106 स्कूलनि जे लाइ जारी थियल स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 18,60,00,00,000 रक़म मुख़्तस थी, जंहिं मां रुॻो 34% रक़म इस्तेमालु थी सघी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल एजुकेशन नाणे खाते ऐं ट्रेज़री विच में राब्ता वधाया वञनि, जीअं स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल में आसानियूं पैदा थी सघनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त ॼाणायल बजट जे इस्तेमाल जे सिलसिले में SOP सां बिल जमा कराइण लाइ हिकु चेक लिस्ट जारी कई वेंदी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त नाणो खातो ऐं ट्रेज़री स्कूल स्पेसिफिक बजट तहत जमा थींदड़ बिल हिकु हफ़्ते अंदरि मंज़ूरु कंदा। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत TEO ऑफिसुनि में 1,41,000 खां वधीक तदरीसी ऐं गैर तदरीसी जायुनि खे बि मरहलेवार क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल कयो वेंदो, जॾहिं त तालीमी एजुकेशन ऑफिसरनि जूं 550 जायूं बि पोल में मुंतकिल करण सां गॾु ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते इंतज़ामी ढांचे जे नए सिर जो झड़क वारी तजवीज़ खे बि मंज़ूरु कयो वियो। हाणे तालुके में रुॻो हिकु TEO रहंदो, जंहिंखे पिणु स्कूल पोल मां पघार मिलंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिद जी चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे सिंधु दरिया मां आइनी ऐं कानूनी हिसे जो पाणी न ॾिनो वियो त सूबे जूं ज़रखेज़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं, सिंध ॾुकार जो शिकार बणिजी वेंदी ऐं उन जा संगीन असर ईंदड़ नसुलनि खे भुगणा पवंदा। हुन चयो त वफ़ाक ऐं सिंध जा हुकमरान हिक ई सिके जा ॿ पासा आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि उहा आहे त सिंधु हुकूमत सिंध जे मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ करण बदिरां उन्हनि खे नुक़सान पहुचायो आहे। हुन सिंध जे हुकमराननि पारां राति जे ऊंदाहीअ में बबरलो में प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल निंगरनि जी बाज़ियाबी जे लाइ क़ाइमु एहतजाजी कैंप ते पुलिस चढ़ाई। सख़्त लठबाज़ी, औरतुनि, वकीलनि ऐं ॿियनि पुरमन एहतजाज कंदड़नि खे गेले गिरफ़्तार करण वारे अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त अहिड़ो अमल जमहूरियत, इंसानी हक़नि ऐं इज़हार जे आज़ादीअ ते हमिलो आहे। हुन मुतालबो कयो त गिरफ़्तार कयल समूरनि माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे, गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। हुन ख़्यालनि जो इज़ार हुन पंहिंजे रिहाइशगाह ते सिंध जे मशहूरु सियासी समाजी शख़्सियतुनि, नामियारे कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड आफ़्ताब गेरा, कामरान गेरा ऐं सैयद वली शाह सां मुलाक़ात दौरान कयो। हुन मौक़े ते मज़कूरा शख़्सियतुनि पंहिंजे साथियुनि समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत जो ऐलान कयो। सिंध हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे कानूनी हैसियत ॾियण जे लाइ कानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो।

19वीं जुलाई 2024 में 6 जनवरी 2025 में वधिक 8 तर्जुमान मुकरर कया वया। उन्हनि तर्जुमाननि मां 4 सिंध असेंबली जा मेंबर, 2 मेयर कराची सखर ऐं बाक़ी 8 अणचूंडियल आहिनि। ज़रे जो चवणु आहे त तजवीज़ कयल बिल गौर वीचार जे लाइ जल्द सिंध काबीना आॾो पेश करण जो इम्कान आहे। सिंध जे सरकारी कॉलेजनि में फर्स्ट ईयर में दाख़िलाउनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां कॉलेजिस खाते पारां सरकारी कॉलेजनि में शागिर्दनि जी दाख़िला जे लाइ लिस्ट जारी कई वई आहे। खाते जे डायरेक्टर जनरल चयो आहे त सिंध में दाख़िला जे लाइ 160,000 खां वधीक दरख़्वास्तूं मिलियूं। रुगो कराची में 98,646 दरख़्वास्तूं जमा करायूं वयूं। खाते मूजिबि शागिर्द 31 जुलाई ताईं पंहिंजी दाख़िला कन्फर्म कराइनि त जीअं दाख़िला जो मरहलो मुकमल थी सघे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सिंध काबीना जे इजलास में सूबे में कणिक जे ज़खीरनि, अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणिक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो। काबीना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणिक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिणु पंहिंजे ज़खीरनि मां कणिक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पवे त वफ़ा खां 5 लख टन कणिक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1600 रुपियनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्कनि जो चवणु आहे त बुहरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत शफ़ाफ़ पॉलिसी इख़्तियार करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे ऐं अटे जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए।

0: हियो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण के दिना इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

बीमारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

कजे ज़खीरनि अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणिक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणिक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिरु कयो वियो। काबीना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणिक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिणु पंहिंजे ज़खीरनि मां कणिक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पवे त वफ़ा खां 5 लख टन कणिक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1600 रुपियनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्कनि जो चवणु आहे त बुहरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत शफ़ाफ़ पॉलिसी अख़्तियार करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई करे ऐं अटे जी फराहमीअ खे यकीनी बणाए।

0: हियो हिन वक्त जो सिंध राउंड अप बे आचर जे सिंध राउंड अप तई गुलाब खान भेण करिंदा इजाजत अल्लाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-32-04372 आई 0242-46-0100।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: हरिद्वार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप संगदे माया गुलाब खान बेण।

हुन जी तस्दीक कई वई। वाके बाद फोती बाड़े जे घर में घुराम बची वयो। ढोरो नारो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में बरसाति जो पहिरियों विस्कारो शाम खां पोइ राति जे वक़्त ताईं जारी रहियो, जंहिं सबबि मौसम ज़बरदस्त थी वई। तालीम खाते पारां इंतिज़ामी सुधारनि जे लाइ क्लस्टर पॉलिसी ते अमल दरामद ऐं गैर ज़रूरी इंतिज़ामी उहिदा ख़तमु करण जी मंज़ूरी। टी ओ जूं 550 पोस्टूं पोल में मुंतकिल करणु ऐं टी ओज़ आफ़िस में मौजूदु 141,000 तदरीसी ऐं गैर तदरीसी अमले खे स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते नए सिरे इंतिज़ामी जोड़ जक वारी तजवीज़ बि मंज़ूरु कई वई। काल्ह तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जे सदारत हेठि थियल इजलास में माली साल 2025-2026 में सूबे जे 34,106 स्कूलनि जे लाइ जारी थियल स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो वियो त 18,60,00,00,000 रक़म मुख़्तस थी, जंहिं मां रुॻो 34% रक़म इस्तेमालु थी सघी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल एजुकेशन नाणे खाते ऐं ट्रेज़री विच में राब्ता वधाया वञनि, जीअं स्कूल स्पेसिफिक बजट जे इस्तेमाल में आसानियूं पैदा थी सघनि। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त ॼाणायल बजट जे इस्तेमाल जे सिलसिले में SOP सां बिल जमा कराइण लाइ हिकु चेक लिस्ट जारी कई वेंदी। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त नाणो खातो ऐं ट्रेज़री स्कूल स्पेसिफिक बजट तहत जमा थींदड़ बिल हिकु हफ़्ते अंदरि मंज़ूरु कंदा। इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त स्कूल क्लस्टर पॉलिसी तहत TEO आफ़िसुनि में 141,000 खां वधीक तदरीसी ऐं गैर तदरीसी जायुनि खे बि मरहलेवार क्लस्टर हब स्कूलनि में मुंतकिल कयो वेंदो, जॾहिं त तालीमी एजुकेशन ऑफिसरनि जूं 550 जायूं बि पोल में मुंतकिल करण सां गॾु ज़िले ऐं डिवीज़नल सतह ते इंतिज़ामी ढांचे जे नए सिर जो झड़क वारी तजवीज़ खे बि मंज़ूरु कयो वियो। हाणे तालुके में रुॻो हिकु TEO रहंदो, जंहिंखे पिणु स्कूल पोल मां पघार मिलंदी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध जे सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी चयो आहे त जेकॾहिं सिंध खे सिंधु दरिया मां आइनी ऐं कानूनी हिसे जो पाणी न ॾिनो वियो त सूबे जूं ज़रखेज़ ज़मीनूं बंजर बणिजी वेंदियूं, सिंध ॾुकार जो शिकार बणिजी वेंदी ऐं उन जा संगीन असर ईंदड़ नसुलनि खे भुगणा पवंदा। हुन चयो त वफ़ाक ऐं सिंध जा हुकमरान हिक ई सिके जा ॿ पासा आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि उहा आहे त सिंध हुकूमत सिंध जे मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ करण बदिरां उन्हनि खे नुक़सान पहुचायो आहे। हुन सिंध जे हुकमराननि पारां राति जे ऊंदाहीअ में बबरलो में प्रिया कुमारी समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी जे लाइ क़ाइमु एहतजाजी कैंप ते पुलिस चढ़ाई। सख़्त लठबाज़ी, औरतुनि, वकीलनि ऐं ॿियनि पुरमन एहतजाज कंदड़नि खे गेले गिरफ़्तार करण वारे अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो त अहिड़ो अमल जमहूरियत, इंसानी हक़नि ऐं इज़हार जे आज़ादीअ ते हमिलो आहे। हुन मुतालबो कयो त गिरफ़्तार कयल समूरनि माण्हुनि खे फौरी तौरु आज़ादु कयो वञे, गुम थियल निंगरियुनि जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणायो वञे ऐं ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ क़ानून मूजिबि कार्रवाई कई वञे। हुननि ख़्यालनि जो इज़ारु हुन पंहिंजे रिहाइशगाह ते सिंध जे मशहूरु सियासी समाजी शख़्सियतुनि नामियारे क़ानूनदान जस्टिस रिटायर्ड आफ़्ताब गेरा, कामरान गेरा ऐं सैयद वली शाह सां मुलाक़ात दौरान कयो। हुन मौक़े ते मज़कूरा शख़्सियतुनि पंहिंजे साथियुनि समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शमूलियत जो ऐलान कयो। सिंधु हुकूमत पारां 14 सरकारी तर्जुमाननि खे क़ानूनी हैसियत ॾियण जे लाइ क़ानून साज़ी करण जो फ़ैसिलो। तर्जुमाननि जी मुक़ररी, अख़्तियारनि, फ़र्ज़नि, पघारुनि, अलाउंस ऐं ॿियनि मरातुनि बाबति बिल आणण ते ग़ौर वीचार शुरू कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिबि तजवीज़ कयल नए क़ानून में सरकारी तर्जुमाननि जी मुक़ररी, अख़्तियारनि, ज़िमेवारनि ऐं मरातुनि बाबति क़ानूनी ढांचो मुतारिफ़ करायो वेंदो। ज़रियनि मूजिबि क़ानून जो मक़सदु तर्जुमाननि जे किरदार खे क़ानूनी हैसियत ॾियणो आहे। ज़रियनि मूजिबि त सरकारी तर्जुमाननि जी पघार, अलाउंस ऐं मरातुनि खे वॾे वज़ीर जे ख़ासि मामलनि जे पघारुनि सां गॾाइण जी तजवीज़ ते ग़ौर कयो पियो वञे। वाज़े रहे त सिंध हुकूमत जे रूल्स ऑफ बिज़नेस में सरकारी तर्जुमाननि लाइ का बि बाज़ाबता गुंजाइश मौजूदु न आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पंहिंजा इंतिज़ामी अख़्तियार इस्तेमालु कंदे सरकारी तर्जुमान मुक़ररु कया हुआ। उन 10 जुलाई 2024 में 6 ऐं जनवरी 2025 में वधीक 8 तर्जुमान मुक़ररु कया विया। उन्हनि तर्जुमाननि मां 4 सिंध असेंबली जा मेंबर, 2 मेयर कराची ऐं सखर ऐं बाक़ी 8 अणचूंडियल आहिनि। ज़रिए जो चवणु आहे त तजवीज़ कयल बिल गौर वीचार जे लाइ जल्द सिंध काबीना आॾो पेश करण जो इम्कानु आहे।
सिंध जे सरकारी कॉलेजनि में फर्स्ट ईयर में दाख़िलाउनि जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां कॉलेजिस खाते पारां सरकारी कॉलेजनि में शागिर्दनि जे दाख़िला जे लाइ लिस्ट जारी कई वई आहे। खाते जे डायरेक्टर जनरल चयो आहे त सिंध में दाख़िला जे लाइ 160,000 खां वधीक दरख़्वास्तूं मिलियूं। रुगो कराची में 98,646 दरख़्वास्तूं जमा करायूं वयूं। खाते मूजिबि शागिर्द 31 जुलाई ताईं पंहिंजी दाख़िला कन्फर्म कराइनि त जीअं दाख़िला जो मरहलो मुकमल थी सघे। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सिंध काबिना जे इजलास में सूबे में कणक जे ज़खीरनि, अटे जी क़ीमतुनि ऐं ख़ुराक खाते जे कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वियो। इजलास खे ॿुधायो त सिंध में 2025-2026 दौरान 4.7 मिलियन टन कणक पैदा थी, जॾहिं त सालियानी घुर्ज 6.53 मिलियन टन आहे, जंहिं सबबि ईंदड़ साल ताईं कणक जी खोट जो ख़दशो ज़ाहिरु कयो वियो। काबिना खे आगाह कयो वियो त ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान वॾे मक़दार में कणक ज़ब्त कई वई आहे, जॾहिं त पास्को पिणु पंहिंजे ज़खीरनि मां कणक विकिरण जी आछ कई आहे। वॾे वज़ीर हिदायत कई त जेकॾहिं ज़रूरत पवे त वफ़ा खां 5 लख टन कणक ख़रीद कई वेंदी ऐं ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं वधीक तेज़ कयूं वेंदियूं। ॿिए तरफ़ सूबे में अटे जूं क़ीमतूं मुसलसल वधी रहियूं आहिनि, जिते 10 किलो अटे जे थेले जी क़ीमत 1600 रुपियनि खां बि मथे पहुची वई आहे। अवामी हल्कनि जो चवणु आहे त बुहरान जो बुनियादी सबबु ख़ुराक खाते जी नाक़स मनसूबाबंदी, ख़रीदारीअ में नाअहली ऐं मुबैना करप्शन आहे, जंहिं सबबु आबादगारनि खे नुक़सान ऐं आम माण्हुनि खे महांगे अटे जी सूरत में तकलीफ़ खे मुंहुं ॾियणो पइजी रहियो आहे। अवाम मुतालबो कयो आहे त हुकूमत